阿萨木邦夷，阿萨木邦察合，阿萨木邦西文明，夜上动物旅药朱离阿萨木邦的经济。听众朋友们，继续收听阿萨木邦。

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्री राम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

या तेवास दालम लेडा कांदी को तंदुरुस्ती रासला फान दालम पियाला दुनिया फीफा अर्जेंटीना मंगाला कन ऑस्ट्रिया दुआ नॉल दालम पर तांडिंग अन ग्रुप जेदी आर्लिंगटन अमेरिका श्रीकात उनतुक ममस्ती कन तेम्पादी बाबा तीगा पुलुदुआ बसार वार्ता बड़ीता सलंका अपनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगाता कान बहवा इंडिया डाला इकोनॉमी यंग वर के बंग पेसाद दान क्रेडिबल सरता तेला मंजादी का कुआतान यंग दापत दियांदल कान दिया मनियाम पाई कान हाल तर सबूत सात बड़ पिदातो दालम सबुआ काते ते यांग दी सलंगारा कान ओले सबुआ रूमा मीडिया स्वास्थ्य दी न्यू दिल्ली के मारिन दिया मंगाता कान बाबा बरबागी इनिशियाटिव तेला दी लुंचुर कान दालम दुआ ब्लास्ता हुन तराहिर देंगन से मंगत मंग उतामा कान बांगसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनिगास कान बाबा नेशन फर्स्ट अडाला प्रिंसिप पांडुअन तरतिंगी बागी इंडिया साथ इनी दिया मंगाता कान बाबा नगेरा इनी तेला मनियाक्सी कान दान मंगलामी साइक्लोस पर तुम्बु हांदान का हांचुरान दिया मंगाता कान बाबा इंडिया मंबावा चिप मेमोरी दारी बरबागी जमन दालम का साधारानिया दिया मंगाता कान बाबा तिंडा कान इंडिया सडंग मम्बेन तुक मासा देपान उनतुक सरीबू ताहुन का देपान दि सेला सेला पर तेमुआन का नम बिलास पनासीहत कामना नेशनल ब्रिक्स पनासीहत कामना नेशनल अजीत डोवाल बर तेमु देंगन पजाबत सीनियर दारी ईरान इथोपिया ब्रसील दांतियों को दिन्यो दिल्ली के मारिन कमंतियान लोअर नगरी मंगाता कान बहवा अजीत देवाल बरतेमु देंगन वाकिल सेक्रेटरी उरुसान परतहनान देवान कमनान नेशनल तरतिंगी ईरान गदीर नजामपुर दालम परतेवान तरसबूत कदवा पिहाक मनिंजा और सितवासी यंग सडंग बर लांगसुंग दी आसिया भारत मरेका जुगा मम बहास कर जासामा दी बहवा प्लेटफॉर्म ब्रिक्स दान हुबुंगान बिलेटरल इंडिया ईरान अजीत देवाल जुगा मंगाडा कान पंबिचार देगान दियोरक तर आलियांसी दिनास इंटेलिजेंट दान कामना नेशनल इथोपिया मिलन लेमा तदेसे पनासियात कामना नेशनल इतु जुगा बरतेमु देंगन सेक्रेटरीज उरुसान मल्टीलैटरल दान पॉलिटिक ब्राजील कार्लोस कोजेंदे सरता मंत्री लुआने गृहतियों को वांग यी प्रधानमंत्री इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू मंगाता कान बाहवा पासुकान पड़तहान इसराइल आईडीएफ दी लेबनान सलातान ममिली की कब बेबासन पनु उनतुक मंग गागाल कान सत्याप अंचमन लांगसुंग मापुन यांग सेडांग बड़के मंग तरहदप मड़ेका अताव तरहदप पंडुडुक विलाया उतारा प्रधानमंत्री इसराइल मंगाता कान बाबा सलुरु बंग समंदुकुंग मड़ेका दिया मनम्बा कान बाबा सत्याप तेगु पारा पंदिरिनिया बाबा इसराइल आकान तेतब बरडा दी जोना कमनान दिन लेबनान सलातान सलामा दी पर लुकान उनतुक मलिंदुंगी पंडुडुक विलाया उतारा दान सलुरु वार्गा नगेरा बरबीचारा कपाडा वार्तावान दी स्विस वाकिल प्रेसिडेंट अमेरिका सरिका जे डी वांस मंगाता कान बाबा अमेरिका सरिकात इंगिन कामनान दान का दौलतान इसराइल तेताब तर जागा मंत्री परतानान राजनाथ सिंह बरतेमु देंगान डायरेक्टर जनरल कमंतियान परतानान इसराइल मेयर जनरल पुन आमिर बाराम दी न्यू दिल्ली कमंतियान परतानान मंगाता कान बहावा आमिर बाराम मंबरी पंजिलासन कपाडा राजनाथ सिंह मंगेनाय कॉमिटमेंट इसराइल उनतुक मम पलवास कर जा सामा परतहनान इंडिया इसराइल दालम करंका कमंतियान स्ट्रैटेजिस कुसूस इंडिया इसराइल सेक्रेटरीज परतहनान राजेश कुमार सिंह जुगा बरतेमु देंगन डायरेक्टर जनरल कमंतेरियन परतहनान इसराइल तरसबु दालम उंगाहन मीडिया सोशल कमंतेरियन मन्याता कान बाबा डिस्कुसी बर फोकस पाडा पंगुआतान करजासामा परतहनान इंडिया इसराइल मलालुई पंगेम्बांगन बरसामा प्रोडक्सी बरसामा दान कोलाब्रासी दान टेक्नोलॉजी मिलिटर जनरासी बरिकुतनिया सरता कमांपुआन परतानान चांगी मंत्री लोअर नगरी डॉक्टर एस जयशंकर बरतेमु देंगन मित्रानिया दाड़ी मंगोलिया बादशेद सेग बातमुंग दी उलान बतार के मारिन दाला मुंगाहान मीडिया सोशल दिया मंगाता कान बाबा पंबिचान तर सबूत मनेगास कन का हंगतान का दाला मान दान पोटेंसी का मित्रान स्ट्रेटेज इंडिया मंगोलिया का दुआ पमिन पिन मनिंग जाओ का माजवान दालम बिदांग बिदांग उतामा कर जासामा बिलेत अल्तर मासुक प्रोयक पंबांगुनान पनिंकातकान कापासितास बुदाया पंडिडी कांदान का अमनान पाड़ा तहप का दुआ कुंजुंगान या डॉक्टर जयशंकर आकन मंगुंजुंगी कोडिया सलातान मंतेरी नगेरा उरुसान लुआर नगेरी पवित्रा मार्गरेता तेला मनंदान तांगनी बुकु पलांगसुंग का बाबा दिकाउदुता बसार कराजान थाईलैंड आतास वफातनिया पुत्री थाईलैंड बजरा की तियाभा नरेंद्रा देव बायावती पुत्री थाईलैंड तरसबुत वाफत पाड़ा तांगल सबलास बुलान इनी सतेला बरडा दालम कौंदीसी कोमा
Salam alabida.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज

0: रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं आप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है, तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान

0: श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

0: दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
2: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
3: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi itna fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो

0: Expressways, reports the Asian Age. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में चार ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज अब नए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेरे एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे, इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तस्किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत की पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार के गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोख और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
2: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं, जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवीत

0: लिए।
1: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अदा किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65 पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मज़कूरा अवार्ड्स गैर मामूली काम के एतराफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत व सनअत, अदविया, अदबो तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दी शोबों में ये अवार्ड्स अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड्स याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है।
3: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूली का ही होता है, तो मरूली का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मस्कूरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज कम 15 अफराद की मौत हो गई थी, जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے وزیر امیت شاہ آج نئی دلی میں بھارت کی قومی زرعی امداد باہمی مارکیٹنگ فیڈریشن نیفیڈ کے نیلامی پورٹل کا آغاز کریں گے۔ نیلامی کے عمل میں شفافیت کو مستحکم بنانے اور کام کاج کو سہل

0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुरमुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान LNG धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आज हम सुनेंगे राग मियां के तोड़ी में सितार वादन। कलाकार हैं अनुजा झा। तबले पर संगत कर रहे हैं अब्दुल रहमान।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे अनुजा झा से सितार वादन, तबले पर संगत कर रहे थे अब्दुल रहमान। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
2: नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह नई नई विषयों पर नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों के द्वारा उन तक पहुंचाते रहते हैं। आज जो विषय हमने रखा है आप लोगों के लिए वो विज्ञान और वैज्ञानिक समझ के दृष्टिकोण के विकास को लेकर के है, खास करके जो विज्ञान का है, आधुनिक अनुसंधान का है, उसका समाज पे प्रभाव, समाज की समस्याओं का वैज्ञानिक अनुसंधान से और विषयों से जुड़ाव से भी जोड़ के है। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में आज उपस्थित हैं श्री सौरभ सेन। श्री सौरभ सेन जी एक प्रमुख मीडिया पेशेवर हैं और उन्होंने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार में वरिष्ठ सलाहकार और प्रमुख के रूप में कार्य किया हुआ है। इनके समय में और इनके नेतृत्व में हमारे देश का पहला 24 घंटे का इंटरनेट आधारित साइंस और टेक्नोलॉजी OTT चैनल इंडिया साइंस की शुरुआत की गयी थी, जिसका मुख्य देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और विज्ञान के विकास को जनता तक पहुंचाना रहा। इसके अलावा उन्होंने कई सरकारी पहलों में अन्य संस्थाओं में एक वरिष्ठ मीडिया सलाहकार के रूप में और एक नेतृत्व के रूप में भी अपने मार्गदर्शन दिए हैं। श्री सौरभ सेन जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार दिलीप जी, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
2: विज्ञान के अनुसंधान का फायदा तभी है कि जब उसकी पहुंच समाज तक पहुंचे और उसके जो प्रोडक्ट अनुसंधान के द्वारा मिलते हैं उनका उपयोग करना भी लोग सही सही समझ सके। हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या रही है अंधविश्वास के प्रति और उसकी चुनौती को लेकर के। आप इस क्षेत्र में कई सालों से हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए एक आम लोगों के बीच में ये जो अंधविश्वास है या गलत सोच है वो किस तरह कठिन रहता है?
3: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समय बदलता जा रहा है। हम आज 2026 में खड़े हैं जब हम कोविड जैसे महामारी को भी पार कर चुके हैं और ये हर एक पड़ाव जो है इसने हमारे देश के युवा को और सच बोला जाए तो स्कूल के बच्चों को भी एक नई जागरूकता दी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज की तारीख में जो बच्चा रस्ते के किनारे बैठ के सब्जी बेचता है वो भी आज डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है, उसके हाथ में भी आज स्मार्टफोन है। यानी कि मान लीजिए हमारे संविधान में जब आर्टिकल 51AH लिखा गया था कि अंधविश्वास को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक जागरूकता की बहुत सख्त आवश्यकता है हमारे देश में, तब इस बात की कोई इमेजिनेशन भी नहीं थी कि डिजिटल एज आएगा या स्मार्टफोन आएगा या कंप्यूटर आएगा। आज तकनीक, विज्ञान, ये सब कुछ को डिजिटल मीडिया ने बहुत कुछ संभावनाओं के साथ हमारे जनता के सामने रखा है। इसलिए जिस बच्चे को स्कूल जाना भी नसीब नहीं होता वो भी आज एक वैज्ञानिक के वीडियो को यूट्यूब में देख के अपने वैज्ञानिक सोच को बदल सकता है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जो अंधविश्वास का जो एक आरोप लगता आया है भारतवर्ष पे, खास करके पश्चिम के देशों के द्वारा, वो आज बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है।
2: भारत की मुख्यधारा की मीडिया में विज्ञान को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। हालांकि आकाशवाणी जैसी संस्थाएं अपने डेडिकेटेड साइंस प्रोग्राम के तहत विज्ञान संचार के अपने कर्तव्य को पूरा कर रही है। जब आप OTT चैनल के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे तो आप किस तरह से आम भाषा में एक शोध और रिसर्च के तहत विज्ञान की सत्यता को लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे?
3: ये एक बहुत अहम सवाल आपने पूछा। हमने जब साइंस चैनल के कंटेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू की तो हमने एक चीज को रियलाइज किया कि जब हम मान लीजिए 25 मिनट या 30 मिनट का वीडियो बनाते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो उसकी जो पेनिट्रेशन होती है यानी कि उसकी जो व्यूअरशिप होती है वो सबसे पहले वो लिमिटेड होती है। दूसरी बात, जब हम उसके एनालिटिक्स के अंदर झांकते थे तो पता चलता था कि बिना अंदर झांके पता चला मान लीजिए 10,000 लोगों ने उस वीडियो को व्यू किया है, लेकिन जब हम उस वीडियो के एनालिटिक्स के अंदरूनी हिस्से में पहुंच के उसका ज्यादा विश्लेषण करना चाहते थे तो पता चलता था कि उन 10,000 लोगों में से

0: 9,000 लोगों ने केवल 10 सेकंड ही उस वीडियो को देखा, तो यानी कि 9,000 लोगों ने उस वीडियो को देखना शुरू तो किया लेकिन उनको पसंद नहीं आया और वो चले गए, और बाकी 1,000 लोगों ने ही उस वीडियो को देखा। यानी कि ना तो उस वीडियो के बनाने का जो कॉस्ट था, उस पे जो खर्चा हुआ, वो भी उठकर सामने नहीं आया, तो मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ, और उस वीडियो का जो पर्पस था यानी कि लोगों तक उस सच को पहुंचाने का, वो भी हमारा सिद्ध पूरी तरह से नहीं हुआ। हमने इसी कारणवश हमने एक वहां पे मीटिंग की और अपने टीम को ये कहा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए जाएं जो हमारे ऑडियंस के मनों में घर कर जाते हैं। जैसे एक टॉपिक मेरे को बहुत खास करके याद है, उन दिनों में शायद वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा था किसी कारण, तो स्पिन बोलिंग और पेस बोलिंग को लेके बहुत चर्चा हो रही थी। तो हमने अपने एक कॉलीग से ये कहा कि भाई एक काम करो, आप 1 मिनट का वीडियो बनाओ, सिर्फ 1 मिनट का, और 1 मिनट मतलब सिर्फ 60 सेकंड, और उस 60 सेकंड में आप सिर्फ ये दर्शाओ कि जो स्पिन बोलिंग होती है वो फिजिक्स के नजारे से देखा जाए तो वो स्पिन क्यों होती है, या जो पेस बोलिंग होती है तो इन स्विंगर की फिजिक्स क्या है, वो बॉल इन स्विंग हवा के दबाव कहां से मिलने पे इन स्विंग होती है, हवा के दबाव किस तरह से मिलने से आउट स्विंग होती है। और वो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 1 मिनट का वीडियो 10 लाख लोगों ने देखा और पूरा 1 मिनट देखा। तो इससे साबित क्या होता है कि साइंस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए सिर्फ साइंस को देखना काफी नहीं है, ये ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझ के उसके कम्युनिकेशन को डिजाइन करना भी उतना ही महत्व रखता है।
1: आपका अनुभव काफी बड़ा है और आपने जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, भारत चूंकि 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है और एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का अभियान भी रहा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, आप उसमें भी अपने अनुभव साझा किए हैं, उसके बारे में बताइए।
0: जी, एक छोटा सा मौका मुझे मिला था जब अर्थ साइंसेस मंत्रालय के द्वारा ये अभियान छेड़ा गया था, तो मेरे लिए पूरी का समुद्र तट बताया गया था कि मेरे को वहां जाना पड़ेगा। हम गए वहां पे और वहां पे हमने थोड़ी सी ये जागरूकता फैलाई कि वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने शायद सारे पूरे भारतवर्ष का तट जो है वो देखा नहीं होगा, उनके लिए पूरी का समुद्र तट ही एकमात्र तट था जिसके बारे में वो वाकिफ थे। और जब उनको वो कहानी सुनाई गई कि किस वजह से ये अभियान चलाया जा रहा है, तो उनके आंखों में जो हमने रोमांच देखा, जो एक्साइटमेंट देखा, और उसके बाद जब वो अभियान हमने चालू किया तो उसमें बच्चों का जो रवैया रहा, उनका जो एक रोल रहा समुद्र तट को साफ करने का, उसका एक सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि कोई भारत का छात्र या युवा वर्ग में जोश तभी आ जाएगा जब उसमें जागरूकता आएगी। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि आज की दुनिया में अगर रील्स और शॉर्ट्स ज्यादा चलती है तो बड़े बड़े वीडियो बना के हम क्या हासिल कर लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप चूंकि मीडिया के टूल बहुत सारे डेवलप हो गए हैं, अपने शॉर्ट रील्स की भी बात की, सोशल मीडिया भी है, बहुत सारे अलग अलग माध्यम अपनाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा भी और इंडिविजुअल के द्वारा भी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में जो सार्वभौमिक समस्या वैश्विक समस्या है हमारे देश के साथ, वो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की। तो इन गंभीर विषयों पर जन जागरूकता के लिए, उनकी सहभागिता के लिए, इस पर नियंत्रण करने के लिए आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावी मीडिया टूल कौन सा हो सकता है?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमें समझना चाहिए, 1 मिनट के लिए आप मीडिया को भूल जाइए, आप सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो इंसान तभी डरता है जब उसके अपने पे आती है। कहीं एक जगह पे 2 फेफड़े लगा दिए गए थे रस्ते के ऊपर, और वही फेफड़ा दिल्ली के किसी शंकर रोड में या कहीं पे 2 फेफड़े लगा दिए गए थे एक साइन बोर्ड के ऊपर, और वो फेफड़े नॉर्मल एटमोस्फेरिक पोल्यूशन पर्यावरण की वजह से वो काले होते गए, और रोज उसी रस्ते से लोग ऑफिस जाते थे और ऑफिस से वापस आते थे। 1 हफ्ते बाद उनको दिखने लगा यार ये फेफड़े काले पड़ने लग गए हैं, 10 दिन बाद उनको डर लगने लगा, 15 दिन बाद वो आतंकित हो गए। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कम्युनिकेशन का माध्यम अब कुछ ऐसा हो गया है जिसको हम एक्सपीरियंशियल बोलते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन के माध्यम से एक इंसान को एक चीज का अनुभव नहीं दे पाते हैं तो फिर वो कम्युनिकेट नहीं होता है। सरकार के प्रति मेरा भी रिक्वेस्ट एक ही है कि जब साइंस कम्युनिकेशन आप करेंगे उसको बोरिंग मत कीजिएगा। साइंस कम्युनिकेशन को हमें एक बहुत ही एक्सपीरियंशियल तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करना चाहिए जिससे ऑडियंस को लगे कि पर्यावरण अगर दूषित होता है तो सबसे ज्यादा इसमें नुकसान मेरा है। तब जाके वो खुद उसमें अपना रोल प्ले करेगा।
1: एआई के इस दौर में आप विज्ञान संचार का भविष्य क्या देखते हैं? क्योंकि एआई के साथ एथिक्स की बात होती है, साथ ही कंटेंट के जो फैक्ट्स हैं उसके एक्यूरेसी की भी बात होती है।
0: देखिए, एआई एक ऐसा नया तकनीक है जिसकी कल्पना भी शायद हमने आज से 3-4 साल पहले नहीं

0: की होगी। इसलिए इसने मनुष्य जाति की जो सोच है उसको पलट के रख दिया है। लेकिन मैं यहां पे भी आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जो वो उदाहरण इसलिए है क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा एआई के खिलाफ जो आर्गुमेंट समाज में चल रहा है वो है एआई का मिसयूज। और वो मिसयूज कुछ इस तरह से है कि आपको एक 10 मंजिला बिल्डिंग में ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट मिल गया तो आपने सीढ़ी चढ़ना बंद कर दिया, आपको कैलकुलेटर मिल गया तो आपने अपने गणित को भूलना शुरू कर दिया,
1: माइंड एप्लीकेशन बंद कर दिया।
0: तो इससे क्या होगा कि आप एआई को बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एआई आपके काम को एफिशिएंसी देने के लिए बनाता है। जो काम आप पहले 10 घंटे में करते थे वो काम आज आप 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं।
1: विज्ञान संचारक की जब हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक कार्य है, एक नॉलेज है और क्या ये एक जॉब है। तो युवाओं के लिए अगर इसको करियर के रूप में देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि विज्ञान संचारक का कोई भविष्य है?
0: विज्ञान संचार, साइंस कम्युनिकेशन, ये जो 2 शब्द हैं इसमें एक है विज्ञान और एक है संचार। अब अगर विज्ञान की जो मात्रा है 50% होती है तो उसमें संचार की मात्रा भी 50% होना अनिवार्य है और उसकी एक वजह है। मान लीजिए आप विज्ञान को हर इंसान के मन तक, हर भारतवासी के घर तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एक वैज्ञानिक को नहीं आती है। एक वैज्ञानिक को विज्ञान के फैक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी है, फिर उसको 140 करोड़ की आबादी के एक देश में जब हमें पहुंचाना होता है वो काम एक वैज्ञानिक के लिए करना असंभव है। वहां पे एक जर्नलिस्ट या कम्युनिकेटर की जरूरत होती है। तो एक वैज्ञानिक और एक कम्युनिकेटर का जब तक तालमेल पूरी तरह से ठीक से नहीं होता है तो साइंस कम्युनिकेशन बेसुरा बना रहेगा।
1: निश्चित रूप से साइंस कम्युनिकेशन का इफेक्टिव वे सभी लोगों के लिए उनकी भाषाओं में करना बहुत जरूरी है और करना ही नहीं करते रहना भी जरूरी है। आकाशवाणी इस कार्य में आगे रहा है, डेडिकेटेड साइंस सेल्स विभिन्न स्टेशनों में हैं और हिंदुस्तान भर में जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसमें विभिन्न बोलियों में विज्ञान विषयों के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता रहा है। आप कई साल पहले भी आकाशवाणी के कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं तो आप आकाशवाणी प्रसारण को भविष्य में किस तरह का स्वरूप की कल्पना करते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो कंपटीशन है उसको देखते हुए?
0: देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे को याद है करीब 30-35 साल पहले मैंने कुछ सालों के लिए युववाणी के लिए थोड़े प्रोग्राम्स बनाए थे, कार्यक्रम बनाए थे। आज बहुत ही मेरे लिए एक इमोशनल वक्त है इस आकाशवाणी भवन में दोबारा अंदर आने का। ये एक बहुत अहम सवाल है, लेकिन एक चीज हमें समझना होगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनके पास रेडियो उपलब्ध नहीं है, यह हमें मान लेना होगा। उनके पास जो यंत्र है वो है फोन, लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप की पेनिट्रेशन शायद 10-15% नहीं होती है, 85-90% स्मार्टफोन की होती है। तो मेरे को आकाशवाणी के ऊपर के जो मैनेजमेंट है उनसे मेरी दरखास्त इतनी सी है एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल कि आज का जो युवा पीढ़ी है, आज का जो ऑडियंस है, उनका कॉन्सेप्ट है कंटेंट ऑन डिमांड। वो ये नहीं सुनना चाहता कि ये कार्यक्रम 3 बजे प्रसारित होगा या ये कंटेंट 7 बजे प्रसारित होगा। आज का युवा पीढ़ी, आज का ऑडियंस आपको ये कहता है कि मुझे जब सुविधा होगी आप तब मुझे कंटेंट दे सकते हैं, मुझे ये कंटेंट 8 बजे चाहिए, क्या मैं 8 बजे आपका 3 बजे वाला कार्यक्रम सुन सकता हूँ? तो अगर आकाशवाणी ये सारे कार्यक्रम एज प्रोग्राम लिंक्स अगर उपलब्ध करा सके तो मेरा ये मानना है और मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि आपकी जो ऑडियंस है वो काफी मल्टीपल्स बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें इतना सब्सटेंस होता है, इसमें इतना नॉलेज होता है जो और कोई प्राइवेट चैनल शायद उपलब्ध नहीं करा पाता है।
1: निश्चित रूप से इस दिशा में आकाशवाणी ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, बदलती हुई तकनीक के साथ साथ लोगों की बदलती हुई आवश्यकताओं और बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए अब आकाशवाणी के सभी चैनल न्यूज ऑन AIR ऐप पे उपलब्ध है। अगर उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाए तो हिंदुस्तान के सारे चैनल वहाँ की रीजनल भाषाओं में भी सुने जा सकते हैं। इसके साथ ही जितने महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, चाहे विज्ञान के हों, स्वास्थ्य के हों, चाहे कृषि के हों, संगीत के हों, खेल के हों, उनके लिए एक डेडिकेटेड लिंक जेनरेट किया जाता है जो यूट्यूब के द्वारा उन्हें उपलब्ध हो जाता है ऑन डिमांड। बस उन्हें जाके आकाशवाणी सर्फ करना है उस स्टेशन के आकाशवाणी केंद्रीय कार्यक्रमों को जहाँ पे की उनको सुनना है कार्यक्रम जिस भाषा में। अब हमारे चैनल DRM पे भी उपलब्ध है और निश्चित ही कुछ समय के बाद हम लोग विजुअल रेडियो चीजों की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से श्रोताओं को उनकी इच्छा, उनकी चाहत के अनुसार हमारे कार्यक्रम उस ढंग से उपलब्ध रहेंगे। श्री सौरभ सेन जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, अपने अनुभव शेयर किए। इन सब अनुभवों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
1: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं की जीवन और उनकी योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्यार भरा नमस्कार।
1: बिल्कुल, और श्रोताओं हमारे साथ आप जुड़े रहिए पूरे एक बजे तक एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़ पर भी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने कार्यक्रम में रोज आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज का हमारा प्रश्न है, परिवार के साथ सबसे अच्छी याद आपकी कौन सी है। जो भी आपको याद आए आप फटाफट से हमें ईमेल करके बताएं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं एफएम गोल्ड जी।

0: London. लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: और कल्पना, तुम्हें भी और हमारे सभी सुनने वालों को मेरा यानी रश्मि कुकरेती का

0: 8.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर भी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने कार्यक्रम में रोज आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज का हमारा प्रश्न है, परिवार के साथ सबसे अच्छी याद आपकी कौन सी है। जो भी आपको याद आए आप फटाफट से हमें ईमेल करके बताएं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, fmgoldga@gmail.com हमारा ईमेल है, तो आप हमें मेल कीजिए।
1: जी बिल्कुल, fmgoldga@gmail.com पर अपनी मेल भेजिए और आपकी मेल की प्रतीक्षा तो हम कर रहे हैं। और इस बीच मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कल्पना,
0: क्या
1: वो ये आ रहा है कि अक्सर जो है वो दूरियों को लोग बुरा मानते हैं, कहते हैं भाई कोसते हैं कि भाई दूर हो गए, लेकिन किसी ने कहा है कि दूरियां सिर्फ फासलों का नाम नहीं है, ये तो अक्सर रिश्तों में गहराई और याद, कहते हैं भाई कोसते हैं कि भाई दूर हो गए, लेकिन किसी ने कहा है कि दूरियां सिर्फ फासलों का नाम नहीं है, ये तो अक्सर रिश्तों में गहराई और यादों को खूबसूरत बनाने का काम भी करती है। क्योंकि जो दूर रहते हैं ना, तो तभी हमें समझ में आता है कि भाई कोई कितना जरूरी है ना।
0: बिल्कुल, प्यार का एहसास तभी होता है जब कोई हमसे दूर जाता है।

0: दोस्तों अभी आप ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे अदालत फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने।
1: और कल्पना, हमारे पास जो तुमने एक प्रश्न पूछा था उसका एक थोड़ा सा जवाब आ गया है।
0: अरे वाह, क्या जवाब है, पढ़ के बताइए
1: भाई।
0: ये प्रदीप खंडेलवाल जी हैं और ये लिखते हैं कि वैसे तो परिवार के साथ बिताया हुआ हर पल बहुत ही सुंदर होता है, और हम सब परिवार वाले जब पोती के साथ खेलते हैं तो वो पल सबसे सुंदर पल होता है।
1: जी बिल्कुल, परिवार के साथ बिताए गए पल तो वाकई सबसे खूबसूरत पल होते हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे जो अन्य श्रोता हैं वो भी हमें ईमेल करके बताते रहें कि वही उनका सबसे खूबसूरत जो पल है अपने परिवार के साथ वो कौन सा था। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और हर दिन की अपनी एक कहानी होती है। इसी क्रम में आज का जो दिन है वो खास है, क्योंकि आज है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, जो प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाई जाती है। वे एक महान शिक्षाविद, राष्ट्रवादी चिंतक, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री तथा भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया, तो उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें सादर श्रद्धांजलि भी देते हैं।
1: और साथ ही प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है, और ये दिन उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो लोगों की सेवा और देश के विकास के लिए काम करते हैं। भारत में भी इस अवसर पर कई सरकारी संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और कल्पना, इस दिन का संदेश यही है कि ईमानदारी, समर्पण और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था से लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है, यानी एक ऐसे समाज का निर्माण जहां पर हर तरफ बस हंसते मुस्कुराते और खुश लोग हों, है ना?
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों अभी आप ये खूबसूरत सा गीत जो सुन रहे थे इसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने, फिल्म का नाम कारवां।
1: हाँ, और देखो कल्पना, तुमने एक प्रश्न पूछा था परिवार के साथ बिताया गया सबसे खूबसूरत पल, और एक और मेल आ गई है हमारे पास।
0: हाँ। हमारे श्रोता जुड़े हुए
1: जी बिल्कुल। असम दुलिया जान से है सुरजीत मांजलैया सिंह, और बड़ा खूबसूरत इनका संदेश है। वो कहते हैं कि दिसंबर 2018 में जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो वो दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, और उस समय रूढ़ीवादी परंपराओं को दरकिनार कर मैंने अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर पूरे समाज को एक भव्य भोज दिया।
0: क्या कहने
1: जी, आमतौर पर ऐसी खुशियां और बड़े आयोजन सिर्फ बेटों के जन्म पर ही करने की रूढ़ीवादी रीत है, लेकिन बेटी के लिए ऐसा करना परंपरा के विरोध जैसा था। लेकिन अपनों के बीच उस खुशी को मनाकर और पुरानी सोच को बदलकर जो सुकून मिला, वो हमारे पूरे परिवार के लिए हमेशा के लिए सबसे अनमोल और गर्व से भरा।

0: बन गया, वाह क्या बात है
1: ये
0: ना।
1: तो सुरजीत जी ने उदाहरण दे दिया लोगों की, वो
0: जी
1: इससे प्रेरणा ले सकते हैं इस बात से भी कि भाई अगर बेटियां होती हैं तो उनके जन्म पर भी कुछ ना कुछ ऐसा उत्सव करें जो चार लोग उससे भी सीखें जैसे हम
0: जी
1: इससे प्रेरणा
0: बिल्कुल,
1: ले
0: जैसे
1: रहे।
0: माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे जो कार्यक्रम घर आंगन का भी यही ध्येय है, महिलाओं की बेटियों की जो है वो मजबूत और सशक्त बेटियां बने, तभी तो हमारा समाज भी मजबूत मजबूत बनेगा और देश भी मजबूत बनेगा, है ना कल्पना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और श्रोताओं, हम कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि भाई किसी ने क्या खूबसूरत सा शेर कहा है। मुझे याद आता है कि जहां लफ्जों के मायने खो जाते हैं वहां से संगीत के सुर शुरू हो जाते हैं।
0: वाह भाई वाह,
1: तो दोस्तों, बस कहने का मतलब यह है कि संगीत जो है वो एक ऐसी थेरेपी है जहाँ विज्ञान और शास्त्र दोनों इसका समर्थन करते हैं।
0: जी हम भी समर्थन करते हैं और WHO भी समर्थन करता है कि भाई वो कहता है कि इतना अध्ययन किया गया है जिसमें कि ये पाया गया है कि जिस संगीत सहित कलात्मक गतिविधियों को स्वास्थ्य और मानसिक सुख समृद्धि के लिए सहायक पाया गया है। संगीत सुनते ही वो कहते हैं कि शरीर से जो तनाव से जुड़ा हुआ हार्मोन होता है ना वो कम हो जाता है और मन शांत होने लगता है कल्पना,
1: अच्छा।
0: और तुम ये पाओगी कि रक्तचाप और हृदय गति भी सामान्य हो जाती है, यानी कि जो खुशी और प्रेरणा से जुड़े हुए जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं ना शरीर में वो सक्रिय हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और जो नींद होती है ना वो भी सुधर जाती है।
1: ये तो है, कभी भी हम कोई संगीत सुनने लगते हैं तो अचानक से हमारा मन उससे ही कनेक्ट हो जाता है।
0: जी बिल्कुल,
1: कितनी बार अगर हमने तेज संगीत सुना दिया तो पैर थिरकने लगते हैं, कभी हम लो सुनने लगते हैं तो उससे हमारा मन भी थोड़ा शांत सा होने लगता है। लेकिन ये सभी फायदे तब होते हैं जब सही समय पर और सही तरीके से संगीत सुना जाए।
0: हाँ,
1: विशेषज्ञ
0: और
1: बात बताते
0: FM
1: भी
0: गोल्ड
1: हैं।
0: से या इंद्रप्रस्थ से संगीत सुना जाए तो भाई उसकी बात ही क्या, रेडियो के संगीत की बात ही क्या, पुराने गाने मीठे गाने है ना।
1: बिल्कुल सही बात है। तो आइए इसी बात पर हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।
0: जी

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे मेरी सूरत तेरी आंखें से, और जिसे गाया मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। तो ऐसे ही गीत सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ।

0: और हमारे श्रोता हमें निरंतर ईमेल कर रहे हैं और एक बार अपना प्रश्न फिर से बता देते हैं कि भाई परिवार के साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल कौन सा है। हमें लिख भेजिए, हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com पर जल्दी जल्दी भेज दीजिए। हम आपके जो उत्तर है उन्हें अपने कार्यक्रम में भी शामिल करेंगे, तो जल्दी से लिख भेजिए अपना उत्तर हमें कि परिवार के साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल कौन सा है।
1: और कल्पना, एक और संदेश आ गया है मेरे पास, ये

0: साल की हुई तो हमने सारी तैयारियां चुपके चुपके कर ली और केक मंगवाया। जैसे ही माँ कमरे में आई, हम सब ने मिलकर उन्हें दिया सरप्राइज। सच बताऊं, उनकी आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान देखकर लगा, अरे वाह, ये पल तो सबसे अनमोल है। और आज भी उस दिन को याद करके हमारा मन खुश हो जाता है।
1: बिल्कुल, और मैं सच बताऊं, आप जब ऐसे SMS ये जो भेज रहे हैं संदेश, इनको पढ़ के तो मेरा भी मन इतना खुश हो रहा है
0: जी, अपनी माँ की याद आ रही है।
1: दूसरे जब इतनी खुशी लिख रहे हैं, उनके जो वाइब्स हैं वो अपने अंदर भी महसूस कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठे हुए। तो आप सब अपने जो उत्तर हैं वो हमें लिखते रहें, भेजते रहें। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक जानकारी है आपके लिए बहुत अच्छी कि एक शेर है, उससे शुरुआत करना चाहूंगी कि जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं।
0: भाई वाह, क्या बात है।
1: और इसी ताकत पर भरोसा रखते हुए दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के पहले महिला पुलिस थाने की शुरुआत की गई है। 19 जून 2026 से महिलाओं को और बच्चों को बेहतर सुरक्षा देने हेतु पुलिस उपस्थिति द्वारा जल्दी, जिसको कहते हैं ना

0: विश्वास और सम्मान के वातावरण में संवाद कर सकेंगे। भाई ये तो बहुत अच्छी पहल है, प्रत्येक महिला को समय पर सहायता, सुरक्षा और न्याय जो सुनिश्चित किया जाएगा। तो भाई दिल्ली पुलिस की इस ऐतिहासिक पहल पर तो हमारी तरफ से और सब, मुझे लगता है सबकी तरफ से शाबाशियां तो होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, शाबाशियां भी होनी चाहिए, साथ ही हमें इतना सुकून हो रहा है कि भाई हमें एक ऐसी सुविधा
0: मिल गया है ना, कितना

0: दोस्तों, अभी ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और अब हम अपने श्रोताओं के एक बार ईमेल और देख लेते हैं कि भाई हमारे कौन कौन से श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजा है।
1: जी बिल्कुल, राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी गांव, चौधरी वसल हिसारगर से ये कह रहे हैं, रश्मि जी और कल्पना जी, एफएम गोल रोजाना सुनता हूँ और अपने परिवार में हंसी मजाक के साथ रहते हैं और रेडियो का बहुत बड़ा परिवार मेरे साथ है।
0: बिल्कुल। और एक ईमेल और आया है हमारे पास वैशाली रहेजा जी का, ये लिखती हैं कि वैसे तो परिवार के साथ बिताया हर लम्हा खास होता है, लेकिन हमारे मनाली की वो ट्रैवलर ट्रिप सबसे यादगार थी। सासू माँ का साथ, दोनों ननद की मस्ती, बच्चों का हुड़दंग और ऊपर से हमारे मजाकिया जीजू की वो मजेदार कॉमेडी, सबने मिलकर पूरे रास्ते फुल एंजॉय किया।
1: अच्छा,
0: रास्ते पर हंसी मजाक और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के बीच हमें एहसास हुआ कि जिंदगी का असली मजा और सुकून सिर्फ अपनी हंसती खेलती फैमिली के साथ में ही है। और एक बात और दोस्तों कहना चाहूंगी कि भाई कई बार लोग बोलते हैं भाई मैं ससुराल वालों के साथ घूमने में मजा नहीं आता, वैशाली जी आपने ये बात लिख के सच में बहुत सारे लोगों का भ्रम तोड़ा है। हमें भी ससुराल वालों के साथ रहने में बहुत मजा आता है, कहीं घूमने जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है
1: और परिवार के साथ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और वो कह रहे हैं कि हम लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति और अनमोल बातें, और साथ में कह रहे हैं हार्दिक शुभकामनाएं, कह रहे हैं कि परिवार वो सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर हर कोई शांति महसूस करता है। बढ़िया संदेश।

0: होती थी बचपन में जब हम लोग इकट्ठे होते थे, तो वो मस्ती वो खुशियाँ बहुत याद आती हैं।
1: वाह,
0: तो ऐसे ही हमारे दोस्त और हमारे साथ जुड़े रहें, उनका प्रश्न है परिवार के साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल, तो हमें आप ईमेल भेजते रहें। हमारा ईमेल आईडी है
1: भाई, खुश रहना भी तो एक ईमेल है ना, खुश रहना भी तो एक हुनर है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों देखिए, हम ऐसी बातें तो करते रहेंगे, साथ ही आपके लिए बहुत सारी जानकारियां भी हमारे पास होती हैं। एक और जानकारी है, एक प्रेरणादायक कहानी है बल्कि, कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ों से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया अपने हुनर के बल पर।
1: अच्छा,
0: एक लड़की, एक लोक कला और उसे बचाने का सपना। ये कहानी है एपन गर्ल के नाम से मशहूर मीनाक्षी खाती की।
1: अरे वाह, तो भाई एपन गर्ल मीनाक्षी खाती की ये बात बता रहे हैं हम लोग। भाई 6 साल की उम्र से जब मीनाक्षी ने पहली बार एपन बनाया तो उनकी दादी ने उन्हें गले लगा लिया। भाई एपन हम बता दें आपको, ये पहाड़ में जब एक तरह की रंगोली होती है, इसे जो है वो चावल को भिगो दिया जाता है और पीस लिया जाता है, और गेरू को भी भिगो कर तैयार कर लिया जाता है, उससे ये रंगोली बनती है, उसको एपन कहा जाता है। तो मीनाक्षी खाती ऐसा एपन बनाती है, तो फिर उनकी दादी ने उन्हें

0: ये खूबसूरत कला लोगों के घरों से गायब होने लगी, नई पीढ़ी से दूर होने लगी, तभी मीनाक्षी ने ठाना कि भाई अपन को खत्म नहीं होने दूंगी। उन्होंने लोक कला को नए दौर से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने शुरू किया मीनाकृति द एपन प्रोजेक्ट, जहां एपन को कपड़ों, होम डेकोर, ज्वेलरी और आधुनिक डिजाइनों में उतारा गया और फिर से ये कला जीवित हुई और लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया।
1: हाँ, बहुत खूबसूरत एपन बनाती है मीनाक्षी जी, मैंने भी इनके बहुत सारे एपन देखे हैं कल्पना। और आज मीनाक्षी हजारों ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को एपन कला सिखा चुकी हैं,
0: सिखा भी रही है और साथ ही अपने काम में मगन मीनाक्षी ने कभी ये नहीं सोचा जो हुआ उनके जीवन में आया वो पल जब उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकली बेटी को राष्ट्रपति भवन में अपनी कला को दिखाने का मौका मिला।
1: वाह, मीनाक्षी गांधी ने ये साबित कर दिया कि अगर आप अपनी जड़ों को संभाल कर रखा जाए तो भाई गाँव की मिट्टी से निकली कला भी दुनिया में अपनी पहचान बना सकती है ना कल्पना।
0: बिल्कुल।

0: एक बार ही बता देते हैं उन्हें कि ड्राइविंग सीखना आसान है, लेकिन भाई गुस्सा ना करें, थोड़ा गुस्से को नियंत्रण पर रखें। भाई कोई ओवरटेक कर दे, गलत कट मार दे, गाड़ी में कोई नुकसान भी कर दे ना, तो भी खड़े होकर कभी लड़ना मत, क्योंकि तुम नहीं जानते सामने कौन है, वो कैसा इंसान है। और तुम ये भी नहीं, तुम लेकिन तुम इतना जानते हो कि आपका घर में कोई इंतजार कर रहा है ना कल्पना?
1: बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि सड़क पर ईगो जीतने से कुछ नहीं मिलता, सबसे बड़ी जीत है अपने घर सुरक्षित लौटना। सड़क पर बहादुर वो नहीं जो लड़ाई कर दे, बल्कि वो है जो माहौल बिगड़ने से पहले वहां से हट जाए।
0: हाँ, और जो है हमेशा जब लाइसेंस लें उसका पेपर दें, एक लर्निंग लाइसेंस दें, और उसके बाद गाड़ी ड्राइव करना सीखें। लाइसेंस के बाद सभी नियमों का, ट्रैफिक कानूनों का पालन करें और सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें और बहुत अच्छे गाड़ीवान बने, है ना?
1: बिल्कुल सही बात है। और इससे होगा क्या कि भाई जब आप अच्छी तरह से

0: आ गया है। और पानी आने के बाद स्वादिष्ट तो ये होती है, लेकिन उसके साथ ही इसके बहुत सारे फायदे
1: पौष्टिक
0: होते हैं।
1: भी होती है
0: हाँ,
1: जी,
0: फाइबर से भरपूर होती है और पाचन में भी ये सहायक होती है। लंबे समय तक इससे पेट भी भरा रहता है और इसमें आयरन, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं।
1: और भाई आहार देखो, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने भी कहा है मन की बात में कि कर्नाटक की पारंपरिक कलबुर्गी रोटी को उल्लेख करा है उन्होंने और कहा है कि भारत के स्थानीय और पौष्टिक जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा है। और ज्वार से बनने वाली ये रोटी न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि महिला सशक्तिकरण और स्थानीय रोजगार का भी सशक्त माध्यम बन रही है। तो इस रोटी को अपनी थाली में शामिल कीजिए क्योंकि ये एक रोटी बढ़ा रही है रोजगार।
1: भाई हमारा मन तो करता है बातें करते रहे लेकिन जाने का तो समय हो रहा है ना। भाई कल्पना भूल रही हो रोटी के बनाती रह गई
0: थोड़ा सा। तो चलिए ये गीत सुनवाते हैं और फिर श्रोताओं से विदा लेते हैं।

0: अभी सशक्त माध्यम बन रही है, तो इस रोटी को अपनी थाली में शामिल कीजिए, क्योंकि ये एक रोटी बढ़ा रही है
1: भाई
0: रोजगार।
1: हमारा मन तो करता है बातें करते रहें, लेकिन जाने का तो समय हो रहा है ना भाई। कल्पना भूल रही हो रोटी के बनाती रह गई।
0: थोड़ा सा तो चलिए ये गीत सुनवाते हैं और फिर श्रोताओं से विदा लेते हैं।

0: 72 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था।

और अगर हम बात करें इस फिल्म के संगीत की, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत और मुकेश जी की आवाज़ में सजे इस फिल्म के जो गीत हैं वो इतने भावुक हैं और इतने लोकप्रिय रहे कि हर किसी की ज़बान पर वो आज भी अगर आप सुनते हैं ना तो झूम उठते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में भी हम उम्मीद करेंगे कि आप इस फिल्म के गीतों को, इस फिल्म से जुड़े हुए किस्सों को सुनेंगे और झूम उठेंगे। तो करते हैं शुरुआत किशोर कुमार की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी दोस्तों, जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ। और आज जिस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं 1971 की वो फिल्म जो कि इमोशंस में हम देखें वो एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम मन मंदिर। जिस फिल्म में देखें तो दो बड़े अदाकार जिनकी अदाकारी की लोग आज भी कसमें लेते हैं, संजीव कुमार और वहीदा रहमान। जी हाँ, दो बड़े बड़े लीजेंड जो हैं वो इस फिल्म में रहे। और अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की तो इस फिल्म में संजीव कुमार और वहीदा रहमान दोनों ने भाई बहन का किरदार निभाया है। संजीव कुमार ने दीपक भाई का किरदार निभाया, वहीं वहीदा रहमान ने उनकी छोटी बहन लक्ष्मी का किरदार निभाया है। और दोनों एक दूसरे को जान से बढ़कर चाहते हैं। माँ बाप उनके हैं नहीं और दीपक ने ही लक्ष्मी को पाल पोस कर बड़ा किया। और दीपक का सिर्फ एक यही सपना है कि वो अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करे और उसकी जो जिंदगी है वो खुशियों से भर जाए। लक्ष्मी की शादी तय होती है रामू के साथ, रामू यानी कि राकेश रोशन, जो कि दीपक के दोस्त भी हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। शादी के ऐन वक्त पर कुछ ऐसी गलतफहमियां होती हैं, कुछ ऐसी सामाजिक परिस्थितियां खड़ी होती हैं कि दीपक को अपनी बहन की खुशियों और उसकी आबरू की रक्षा करने के लिए एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। शादी के बाद भी लक्ष्मी की जो शादी होती है उसकी जिंदगी में, उसकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारे अजीबोगरीब उतार चढ़ाव आते हैं और सभी मुश्किलों के सामने ढाल बनकर खड़ा होता है उसका भाई दीपक। दीपक को अपनी बहन का घर बिखरने से बचाने के लिए अपने प्यार को, अपनी खुशियों को, यहाँ तक कि अपने स्वाभिमान तक को भी कुर्बान करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ फिल्म की एक कहानी नहीं बल्कि ये दिखाता है कि एक भाई बहन की जो खुशहाली, जो एक भाई है वो अपनी बहन की खुशहाली के लिए किस हद तक जा सकता है, भाई बहन का प्यार किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करता है वो दिखाया गया है इस फिल्म में। उतार चढ़ाव, गलतफहमियां और आंसुओं के इस लंबे सफर के बाद आखिरकार सच्चाई की जीत होती है और जो बिखरे हुए रिश्ते हैं वो संभलते हैं, गलतफहमियां दूर होती हैं और वही भाई का जो प्यार था, भाई का जो त्याग था वो रंग लाता है और जो सब बिखरा होता है वो सब समेट जाता है और महकता हुआ एक मन मंदिर बन जाता है।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज की फिल्म मन मंदिर। भाई, अगर हम इस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं तो इस फिल्म का जिक्र तब तक अधूरा है जब तक हम इस फिल्म के संगीत और इस फिल्म के कुछ हल्के फिलिप के जो पल हैं उनकी बात ना करें। भाई, जहां एक तरफ ये जो फिल्म है पूरी फिल्म गंभीर और पारिवारिक मोड़ लेकर रखती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म में महमूद साहब की जो बेमिसाल कॉमेडी है वो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देती है। और बीच बीच में जब भी महमूद साहब आते हैं ना तो वो भावुक हुए मन में जो लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा हंसने के लिए मजबूर तो कर ही देती है। वहीं दूसरी तरफ किशोर कुमार जी, लता जी की आवाज़ में जो सदाबहार नगमे हैं वो भी एकदम कमाल के हैं। और आनंद बख्शी साहब के जो लिखे हुए गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जोड़ी का जो संगीत है वो इस फिल्म की एक तरह से कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। वैसे इस फिल्म से जुड़े और भी किस्से और भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत संगीत।

जी दोस्तों, जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज की फिल्म मन मंदिर। और जैसा कि हमने कहा कि जो इस फिल्म का संगीत था उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने गीत लिखे, आनंद बख्शी साहब ने। और उस दौर में जब ये फिल्म आई थी उस वक्त में वैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जो जोड़ी है वो हमेशा ही ऐसा कमाल करती थी कि जिस फिल्म में भी वो आ जाए तो वो म्यूजिकल हिट तो हो ही जाती थी। और वही कमाल इस फिल्म में भी हुआ, लेकिन इस फिल्म में एक श्रेय इस फिल्म की कहानी को भी जाता है जिसको निर्देशित किया तापी चाणक्य ने। अब तापी चाणक्य कौन है आप सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि ये इस फिल्म के डायरेक्टर तो हैं और वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि ज़्यादातर तेलुगु और तमिल सिनेमा में उन्होंने काम किया और बड़े बड़े फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया। यहाँ तक कि एन टी रामा राव के साथ उन्होंने बहुत सी ब्लॉकबस्टर जो फिल्में हैं वो बनाई थी। लेकिन जब उन्हें हिंदी सिनेमा में आने का मौका मिला तो उन्होंने चेन्नई के एक प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर ये फिल्म बनाई मन मंदिर, जो कि पूरी तरह से बिल्कुल चेन्नई वाले हिसाब किताब से एकदम अलग, ठेठ उत्तर भारत की जो पारिवारिक मूल्य थे उन सबको मिला करके ये फिल्म बनाई गई थी। और जो फिल्म की शूटिंग है उसका पूरा जो बड़ा एक हिस्सा है वो चेन्नई के मशहूर वाहिनी स्टूडियो में हुआ था शूट। है ना कमाल की बात कि मतलब ये फिल्म बनी पूरी तरह से चेन्नई में थी, लेकिन इसका जो पूरा एक सेट था वो पूरी तरह से उत्तर भारत के जो भाषा, उत्तर भारत का पहनावा और वहीं सबकी चीज़ों को लेकर बना था। और ये फिल्म ने कमाल दिखाया क्योंकि इस फिल्म में मतलब भाषा का और क्षेत्र की सीमाओं को सबको तोड़कर एक ऐसी फिल्म बनाई तापी चाणक्य ने जो कि पूरे देश के मन मंदिर में बस गई।

और बिट्टू जहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं राधे दीपक और अंकुर राघव गुप्ता के साथ। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम कृष्णा देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने फिल्म की काफी अच्छी जानकारी हम तक पहुंचाई है। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चंदसौलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी एक और बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि तापी चाणक्य द्वारा निर्देशित ये एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा था और ये संदेश उन्होंने हम तक पहुंचाया है। प्रमिला भावसार के साथ वीरगांव गुजरात से अगला संदेश हम तक पहुंचाया है सुनील पाठक जी ने और ये संदेश इन्होंने हम तक कहां से पहुंचाया है ये हमें नहीं पता चल रहा है। अगला संदेश हम शामिल कर लेते हैं और इसको भेजा जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा ने खुशनुमा ये संदेश भेजा है हमारे पास। ये गुरमीत सिंह मीता जी ने साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमारे साथ जुड़े हैं। मालियान सरदना से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जिव्यम जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजल का पंजाब खेड़ा परिवार हमारे साथ जुड़ा है। भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, टिवानशी, वाणी और आरबी खेड़ा, जीवन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्य देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये अगला संदेश भेजा है पंजाब के वड़िंगखेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा ने। नेहरू चौक पैठन से हमारे साथ जुड़े हैं सूरज जाधव, अनीता, सोनल प्रसाद जाधव के साथ। मंटू शर्मा, सुशीला, लीलाधर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ इनके दोस्त राजू अग्रवाल, चौधरी वास से हमारे साथ जुड़े हैं। गांव शेरड़ा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। अपर कोट मोहन बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनारायण साहू, कुमारी योगिता, कुमारी गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई साहू हमारे साथ जुड़े हैं। भाई ग्राम भाईना बोईनापार लाटापोर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से सुधाकर, राजा जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, सर्वत, प्रणाली, सानवी, हर्षदा देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से आनंद पर्वत दिल्ली से लखपतराज, वेद प्रकाश चौहान, सुबेदार अमर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौंकुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के साथ हम तक जुड़े हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन हमारे साथ जुड़े हैं। शांतिनगर सोनीपत से कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा और मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबलिश पवार जी हमारे साथ जुड़े हैं और लिखते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मन मंदिर फिल्म में अभिनेता राकेश रोशन द्वारा साइन और शूट की गई सबसे पहली फिल्म है। हालांकि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग सबसे पहले शुरू की थी लेकिन उनकी दूसरी साइन की गई जो फिल्म घर घर की कहानी है वो पहले बनकर तैयार हो गई और सिनेमा घरों में रिलीज भी हो गई। बहुत खूबसूरत जानकारी और साथ ही साथ लिखते हैं कि वहीदा रहमान और संजय कुमार के साथ बतौर मुख्य अभिनेत्री उनकी आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने साइन की। खूबसूरत जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बबलेश जी और उन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया है। गांधी चौक बढ़ने राजस्थान से इनके साथ है डैनी पवार और मनीष पवार के साथ ये जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेलो महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल और मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान ताड़े हमारे साथ जुड़े हैं। नारायण इंगले, आशीष मुरहरकर के साथ और ये अगला संदेश बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन जी का और जो संदेश हमारे पास आया है अगला सौरा श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जान, युसरा जान, इम्तियाज और मुस्ताक डार हमारे साथ जुड़े

0: है हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा का। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़ी है मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा के साथ। छोटी बरेलिया से हमारे पास संदेश भेजा अहमद फूल वाले ने, संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत कमल सहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जलंधर, पंजाब से ये संदेश उन्होंने हम तक पहुँचाया है। नौशाद सलमानी बेबी, आलिया, आयान बाबू, निसार सलमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। तो दोस्तों ये थे वो ढेर सारे संदेश जिनके ज़रिए आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। बालकी जी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और सुदर्शन मुखी जी का एक और संदेश, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव से बबलू साहू जामुन देवी जी का है, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पॉल विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हैं, दत्रेंगी भट्टापारा से भागवत शर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम, और ये अगला संदेश कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान जी का। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके ज़रिए आप हम तक जुड़े, और कार्यक्रम में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बातें की। पुराना सिनेमा हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता था, किस तरह से हमें ज़िंदगी को जीना है वो चीज़ें हमें सिनेमा से सीखने को मिलती थी, लेकिन अब ये सफ़र होता है यहीं पर ख़त्म। मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, छोड़े जाती हूँ, लेकिन यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल ने नवी सुरक्षा खतरियां ते चुनौतियां प्रति सुचेत रहने की लोड़ ते जोर दिता है। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड ते नीलामी पोर्टल nafix.in नूं लॉन्च किया। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौसम ते अल नीनो प्रभाव अते खेतीबाड़ी ते इसके असर बारे एक जायजा मीटिंग की। किसानों नूं कोई मुश्किल दरपेश ना आउण देण दी सरकार दी वचनबद्धता प्रगटाई। भारत विच अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि भारत ते अमरीका एक मजबूत दवले व्यापार समझौते नूं अंतम रूप देण वल फैसला कुन तौर ते अगे वध रहे ने। अयोध्या दे राम मंदिर नूं मिले दान दी हीराफेरी दे इल्जामां दी जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT ने अपनी मुढली जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार नूं सौंप दित्ती है। हुण खबरां विस्थार नाल। भारत ने अमरीका ते ईरान विचकार होए समझौते MOU दा स्वागत कीता है। नवी दिल्ली विच 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारां दी मीटिंग नूं संबोधन करदिआं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल ने कहा कि ए दुनिया भर विच ऊर्जा सुरक्षा नूं मजबूत करेगा। उन्हां ने होरमुस बणजोड़ दे खुलण दा भी स्वागत कीता अते इस गल ते जोर दित्ता कि ए सप्लाई लड़ी दीआं रुकावटां नूं दूर करन अते खादां ते रसायणां वर्गीआं वस्तां दी घाट नूं हटाउण विच मदद करेगा। श्री डोवाल ने इस गल ते भी जोर दिता कि खेतर अते इस तों अगे नैविगेशन दी वधेरे आजादी आर्थिक खुशहाली विच योगदान पाएगी। उन्हां कहा कि दुनिया फौजी टकरावां, भू सियासी अनिश्चितावां, आर्थिक तनाव अते विघनकारी तकनालोजियां वाले एक उथल पुथल दे दौर विचों लंघ रही है। उभर रहीआं सुरक्षा चिंतावां नूं उजागर करदे होए उन्हां कहा कि गैर रवायती खतरिआं ने राष्ट्रीय सरहदां नूं पार कर लिआ ते रवायती प्रतिक्रियावां नूं चुनौती देण वालियां समर्थावां विकसित कीतियां ने। उन्हां ने एक वधदी डिजिटाइज्ड दुनिया विच नवीआं विघनकारी तकनालोजियां, दहशतगर्दी ते वधदे होए लुकवें रूपां अते साइबर खतरिआं दी पछाण ते समूहिक ध्यान देण दी लोड़ वालियां चुनौतियां वजों कीती।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ

मंदिर ट्रस्ट की बेनती तो बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख नू एसआईटी का गठन किया। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक कथित अध्यापक भर्ती प्रीख्या धोखाधड़ी मामले के संबंध में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 थावां ते तलाशी ले रहा है। डायरेक्टोरेट ने कहा कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा वालों 2017 दर्ज की गई FIR ते आधारित है। देश विच 5 लाख तो वध अंग दान दा अहद लिया गया है। यह अंग टिशू दान प्रति लोगों विच वध रही जागरूकता और समूहक वचनबद्धता नू दर्शाता है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने कहा कि अंगदान ट्रांसप्लांटेशन दी उड़ीक कर रहे मरीजा नू उम्मीद अते जीवन विच दूजा मौका दिंदा है। मंत्रालय मुताबिक यह प्राप्ति समाजिक जिम्मेवारी अते भाईवाली नू विकसित करने लई सरकार दे निरंतर यतना दा नतीजा है। राष्ट्रीय अंग ते टिशू ट्रांसप्लांट संगठन दे डायरेक्टर डॉ अनिल कुमार ने अंगदान लई देश भर दे नागरिकां वल्लों मिली भारी हमायत लई धन्नवाद प्रगट कीता। उन्होंने सारियां राज सरकारां ते केंद्र शासित प्रदेशां दी निरंतर वचनबद्धता अते सहयोग दी भी शलाघा कीती। आखिर च खास खबरां इक बार फेर

0: में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत और सनत, अदवियात, अदब व तालीम, खेलकूद, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दिद शोबों में अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
1: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म की सीरीज के तहत खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड से याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किए जाएंगे।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के दिन के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने डॉक्टर मुखर्जी को एक नामवर माहिर तालीम, अजीम मुजाहिद आजादी और एक दूर अंदेश रहनुमा करार दिया है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने भी मुमताज मुहिब वतन स्कॉलर और मुदब्बिर डॉक्टर मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जिंदगी मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर दी थी। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड मुल्क में तकरीबन 74 लाख किसानों की मदद कर रहा है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड ऑक्शन पोर्टल nefex.in के लॉन्च के मौके पर कही।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। सिर्फ कृषि उत्पादों की खरीदी तक नाफेड सीमित नहीं रहा है, विगत 3 साल में नाफेड ने बहुत अच्छा काम किया और इसके कारण नाफेड की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है।
1: जनाब शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत भी पेश किया। वजीर दाखिला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि वो कौम परस्ती, सकाफती कौम परस्ती और भारतीय सकाफत के हामी थे। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मफाहमत नामे का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि इस मफाहमत नामे के नतीजे में दुनिया भर में तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम होगी। उन्होंने आबनाए हुरमुज खोले जाने का भी खैर मकदम किया और कहा कि इससे सप्लाई में हायल रुकावटें दूर होंगी और कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद जैसी चीजों की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। जनाब डोभाल ने कहा कि खित्ते और खित्ते से बाहर जहाजरानी की ज्यादा पेशरफ्त से इक्तिसादी खुशहाली को फरोग हासिल होगा। जनाब डोभाल ने मजीद कहा कि आज दुनिया अफरा तफरी के दौर से गुजर रही है जहां फौजी तनाज़ियात, जोग्राफियाई, सियासी गैर यकीनी इक्तिसादी मसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है जो रुकावट डाल सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा की भर्ती के इम्तिहानात के मामले में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 जगहों पर छापे मार रहा है। डायरेक्टोरेट का कहना है कि मरकजी

0: Ghana till tomorrow. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh and Uttarakhand for the day. According to the weather agency, heat wave conditions are expected over Chhattisgarh, eastern parts of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh today, while severe heat wave and warm night conditions are expected over Vidarbh till tomorrow. IMD said a gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 days. In FIFA World Cup, Argentina star captain Lionel Messi has created history after he scored 18 goals, surpassing Germany's Miroslav Klose's record of 16 goals to become the highest goal scorer in World Cup history. In a super clash, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32. With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Ulaanbaatar, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

0: किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है। तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी, या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति

0: खरीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के

0: वाल्मीकि पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार।

बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के

कभी एक आशिक बनकर अपनी मखमली शायरी से दिलों को मोम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज जन्मदिन है फिल्म इंडस्ट्री के इन्हीं बेबाक और हल्दर अजीज अदाकार राज बब्बर साहब का। तो दोस्तों, आप सभी श्रोताओं की तरफ से और हमारी तरफ से राज बब्बर साहब को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज ही के दिन वो आए हैं और राज बब्बर साहब की जो शख्सियत है वो एक अलग सा चार्म अपने अंदर लिए हुए है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो ठहर जाने का मन करता है, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन पर जब भी वो नज़र आते हैं तो उनकी आंखें हमेशा बोलती हैं, उनकी आवाज़ इतनी दमदार होती है कि वो सीधे रूह तक उतर जाती है। तो दोस्तों, उनके सालगिरह के इस खुशनुमा मौके पर क्यों ना एक खूबसूरत सा ऐसा सदाबहार नगमा सुने जिसमें उन्होंने अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरती के साथ में, मोहब्बत के साथ में इस गीत को गाया है। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज हम बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उस शख्सियत को जिसका नाम है राज बब्बर। राज बब्बर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD से निकले एक ऐसे आम लड़के जो कि आगे चलकर बने सिनेमा का नगीना। जी हाँ दोस्तों, राज बब्बर साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी एक गंभीर सी शख्सियत थी और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी ने सबको एकदम से चौंका कर रख दिया।

लेकिन ये जो सफर था वो इंटेंस एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जब रोमांस करने का नंबर आया तो उन्होंने रोमांस भी उसी संजीदगी के साथ किया। लेकिन उनके किरदारों में एक अलग सी मासूमियत थी, एक अलग सी शिद्दत थी जो कि सीधे उतर जाती थी दिल को। जी हाँ दोस्तों, राजबब्बर साहब की अगर हम फिल्मों की बात करें तो उसमें 1980 की आई फिल्म इंसाफ का तराजू, जिसे बनाया था बी आर चोपड़ा साहब ने, एक ऐसी खूबसूरत फिल्म थी जो कि राजबब्बर साहब के करियर का एक टर्निंग पॉइंट आप उसे कह सकते हैं। लेकिन असली जो एक और किरदार निकल कर आया उनका, वो थी फिल्म निखा, जो कि सन 1982 में आई थी। इस फिल्म में राजबब्बर साहब ने एक ऐसे शायर का किरदार निभाया था जो कि अपनी पाक मोहब्बत को पाने की जद्दोजहद करता रहता है, और इस फिल्म में वो पूरी तरह से उदास, गम और प्यार में डूबे रहते हैं, लेकिन एक भी आंच नहीं आने देते अपने प्यार के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत सा उनका किरदार था, और शायद यही वजह है कि वो फिल्म और उस फिल्म के जो गीत हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। राजबब्बर साहब ने सिर्फ कुछ फिल्मों में नहीं बल्कि ऐसी तकरीबन दर्जनों फिल्मों में इतना बेहतरीन काम किया, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने खुद को किसी एक इमेज में नहीं बांधा, जहाँ

आम इंसान का किरदार निभाया, जो कि आम इंसान की ज़रूरतों को, उनकी तकलीफ़ों के लिए आवाज़ उठाता है। बहुत से किरदार उन्होंने ऐसे निभाए जो कि आम आदमी के दिल के बिल्कुल करीब थे, और इन आक्रोश और ड्रामों के बीच में उन्होंने की फिल्म प्रेम गीत। इस फिल्म का हर गीत दिल के एकदम करीब जाता है। तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत पंकज उदास की आवाज़ में उन्हीं की फिल्म से।

जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं राजबब्बर साहब को, जिनका जन्मदिन है। और हम देखें तो 80 के दशक के बीच में राजबब्बर साहब एक ऐसे हीरो के रूप में उभरे जो कि समाज की कुरीतियों को, उनके जो भ्रष्टाचार समाज में फैला हुआ है या फिर जो भी कुछ कमियां हमारे समाज में कानून में है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और इसी बीच आई उनकी फिल्म आज की आवाज, जिसमें उन्होंने एक ऐसे प्रोफेसर का किरदार निभाया था जो कि हालात के चलते सिस्टम के खिलाफ हथियार उठा लेता है, यानी कि प्रोफेसर से सीधा हथियार उठाकर सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में। और यही वो फिल्म थी जिस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर का, बेस्ट एक्टर का अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। यहाँ से शुरुआत हुई उनके अवार्ड के सिस्टम की। और अभी हम शुरुआत करेंगे हमारे बहुत से श्रोताओं के संदेशों

बाकी भी जिनके संदेश हमारे पास ढेर सारे आ रहे हैं। और गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह के साथ में, दादा बाबू रोड गिडी झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज हसन, बाबू अहद मिफ्रा, बेबी चाहत और सादिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ कैंट से हमारे साथ जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मनु जी का, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है पंकज शर्मा जी ने और लिखते हैं कि ये जो गीत आपने चलाया बहुत ही खूबसूरत लगा। और अगला जो संदेश हम तक आया है उसको भेजने वाले हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और उनके साथ है मास्टर अल कबीर, सैयद मशरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, आलोकिक और चंसोलिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वड़िंगखेड़ा पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा के साथ, गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निरोफर फातिमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुदर्शन मुखी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अनिता मुखी, सिमरन मुखी के साथ शांतिनगर सोनीपत से, हीरामणि वर्मा जी जुड़े हुए हैं दतरंगी भट्टापारा से और गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हैं, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कस्बा गन्ना और यूपी से, छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से राजेश सेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संदीप मकर, ज्योति, मन्नत, भारत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमल सहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है।

और इसको पहुंचाने वाले हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे जी। और ये संदेश इन्होंने हम तक पहुंचाया है शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। गांव घिटोरनी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं साबिन हुसैन मिरासी अमीना बेगम के साथ, और गांव रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है सुरसंगम रेडियो श्रोता संघ से और बीरगांव गुजरात से अजित भावसार, प्रमिला भावसार जी ने, और इन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी हम तक दी और लिखते हैं कि राजबब्बर साहब के जो दामाद हैं वो मशहूर क्राइम सीरियल क्राइम पेट्रोल के एंकर अनूप सोनी जी हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़े हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला जो संदेश है वो उसको पहुंचाया है पाड़गंज मल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू नायक, मधु नायक जी ने, पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, नारायण इंगले, आशीष मुरहेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकोटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और पार ढींगिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए आप सभी हम तक जुड़े, और भी बहुत से संदेश जिन्हें हम अभी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और खूबसूरत संगीत राजबब्बर साहब की खूबसूरत फिल्मों के चुनिंदा पिटारे में से।

स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपनी कशिश से दुनिया को सरोबार रखें। तो दोस्तों, लेती हूँ अभी आप सभी से अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की और छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फिल्म से। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और अभी वक्त हुआ है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज की। तो लीजिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ।

लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में आंधी फिल्म का ये गीत आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं श्री 420 फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द खुद समझ सके तो ले ले यार। जी हाँ दोस्तों, ये जो गाना है ये ना सिर्फ खुशियाँ बांटने का गीत है, अगर हम अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों का दुख बांट लेते हैं तो उन्हें तो खुशी होती ही है, उनकी तकलीफ़ों को भी दूर किया जा सकता है, और साथ ही साथ हमें खुशी बांटने से हमें खुद को बहुत खुशी मिलती है। तो आप ये गीत सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में फिल्म अनाड़ी से।

अधूरा आदमी फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा आपने सुना, जिसे आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने। अब आपको सुनाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में काला पानी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

शैलेंद्र की आवाज में खेल खेल में फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाज में फिल्म शो।

0: शोर फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मैटिनी मेलोडियस अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
1: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन, हम आपके मिजाज और शौक का पूरा ख्याल करते हैं, यही वजह है कि आपके लिए हम हमेशा नए नए प्रोग्राम तरतीब देते हैं और इस प्रोग्राम के जरिए नए नए लोगों और उनके ख्यालात से भी आपको वाकिफ कराते हैं, उनके ख्यालात आपको सुनवाते हैं। दुनिया भर की जबानों को दो खानों में तकसीम किया गया है, यानी नसर और नज्म। अदीबो मुसन्निफ नसर में नई नई इजादात, ख्यालात, तहकीक और तनकीद को पेश करते हैं, वहीं शायर कम लफ्जों में उन्हीं एहसासात और जज्बा

0: बाजी को यहाँ तो मुझसे अच्छे भी ठिकाने लग रहे हैं।
1: अरे वाह, बहुत खूब।
0: और एक और गजल पेश है, माजी के हालात का क्या है अब अहवाल सुनाना क्या। माजी के हालात का क्या है अब अहवाल सुनाना क्या, दिल पे जो गुजरी सो गुजरी, दिल का हाल बताना क्या।
2: क्या,
0: क्या बेहतर है क्या बेजा है हमको मत समझाओ मियाँ। क्या बेहतर है क्या बेजा है हमको मत समझाओ मियाँ, हमको पता है इस दुनिया में सच क्या है अफसाना क्या।
1: अरे वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर।
0: हमको पता है इस दुनिया में सच क्या है अफसाना क्या। बहुत शुक्रिया। जिनको जाना था वो गए अब जो है उनकी लाज रखो। जिनको जाना था वो गए अब जो है उनकी लाज रखो, किस्मत पर इल्जाम लगाना और इतना पछताना क्या। जाने किस चक्कर में हम बर्बाद हुए जाते हैं नवेद। जाने किस चक्कर में हम बर्बाद हुए जाते हैं नवेद, जिनसे हमको कुछ न मिला है खुद को उन पे लुटाना क्या।
2: क्या कहने।
0: एक और गजल का मतलब पेश करता हूँ, खुद को क्यों इतना परेशान किए जाता है। खुद को क्यों इतना परेशान किए जाता है, बस मेरी जान किए जाता है। अपनी बर्बादी का सामान लिए फिरता है। अपनी बर्बादी का सामान लिए फिरता है, काम दुश्मन का भी आसान किए जाता है। दिल है मेरा या कोई मीर का दीवान है ये। दिल है मेरा या कोई मीर का दीवान है ये, सारे दुख दर्द को मेहमान किए जाता है। और एक शेर है, इतना हक तो मुझे हासिल है कि पूछूं उससे। इतना हक तो मुझे हासिल है कि पूछूं उससे, क्या हुआ क्यों मुझे अनजान किए जाता है। एक और गजल से चंद अशआर समाप्त कीजिए। शेर है, भले ही मुझसे वो लाख अच्छा हो पर मैं पीछे नहीं हटूंगा।
1: अरे वाह।
0: भले ही मुझसे वो लाख अच्छा हो पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो अब से सूरज की रोशनी के मुकाबले में दिया जलेगा।
1: क्या बात।
0: भले ही मुझसे वो लाख अच्छा हो पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो अब से सूरज की रोशनी के मुकाबले में दिया जलेगा। अगर हमें कुछ नहीं मिला है तो एक अच्छाई भी है इसमें। अगर हमें कुछ नहीं मिला है तो एक अच्छाई भी है इसमें, कि ना मुरादों की महफिलों में हमारा सिक्का चला करेगा।
1: क्या वाह।
0: अभी ये शोला भले ही मध्यम है पर मुझे है यकीन निक दिन। अभी ये शोला भले ही मध्यम है पर मुझे है यकीन निक दिन, इन्हीं मोहब्बत की शाहराहों से इनकलाबे वफा उठेगा।
1: क्या वाह।
0: तमाम बातें दुरुस्त अपनी जगह, मगर मुझे बताओ साहब, नवेद यूसुफ भी अपनी किस्मत से आखिरश कब तलक लड़ेगा।
1: वाह,
2: क्या।
0: बहुत शुक्रिया। एक और मैं छोटी सी गजल पेश करता हूँ, ये ना मुरादी का रोना छोड़े तो कुछ करें हम। ये ना मुरादी का रोना छोड़े तो कुछ करें हम, पुरानी यादों से मुंह को मोड़े तो कुछ करें हम।
1: क्या बात है।
0: ये ना मुरादी का रोना छोड़े तो कुछ करें हम, पुरानी यादों से मुंह को मोड़े तो कुछ करें हम।
1: क्या बात।
0: हम इतनी हिम्मत जुटाएं कैसे कि कह दे सब कुछ। हम इतनी हिम्मत जुटाएं कैसे कि कह दे सब कुछ, वो देखकर हमको मुंह न फेरें तो कुछ करें हम।
1: क्या बात।
0: वो देखकर हमको मुंह न फेरें तो कुछ करें हम। मगता है नवेद यूसुफ ये राज क्या है इन उलझनों का। नवेद यूसुफ ये राज क्या है इन उलझनों का, अगर कभी आप हमसे बोलें तो कुछ करें हम।
1: क्या बात है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: आप समाप्त कर रहे थे नवेद यूसुफ को, यानी नाचीज को। अब मैं दावत सुखन देता हूँ उर्दू के स्कॉलर जो DU से PhD कर रही हैं, खुशबू परवीन साहबा को, कि वो अपना कलाम पेश करें।
2: बहुत शुक्रिया नवेद साहब। गजल का मतलब है कि खाने दिल में अजब नक्श सा तहरीर हुआ। खाने दिल में अजब नक्श सा तहरीर हुआ, कौन इस दश्त की तन्हाई की तस्वीर हुआ।
0: क्या बात।
2: शुक्रिया। खाने दिल में अजब नक्श सा तहरीर हुआ, कौन इस दश्त की तन्हाई में तस्वीर हुआ, और ये शेर के दिल ने चाहा जिसे वो और किसी का निकला। दिल ने चाहा जिसे वो और किसी का निकला, और मुकद्दर में कोई और ही तहरीर हुआ। बहुत शुक्रिया। और मुकद्दर में कोई और ही तहरीर हुआ, और ये शेर भी, कि कोई शाना ही ना था सर को टिकाने के लिए। कोई शाना ही ना था सर को टिकाने के लिए, मेरा आंसू ही मेरे दर्द की इकसीर हुआ। मेरा आंसू ही मेरे दर्द की इकसीर हुआ, اور یہ شعر بطور خاص

0: कि कोई करता ही नहीं मेरे सुखन को तस्लीम, कोई करता ही नहीं मेरे सुखन को तस्लीम, शहर में हर कोई गालिब तो कोई मीर हुआ।
1: क्या बात है,
0: शुक्रिया। शहर में हर कोई गालिब तो कोई मीर हुआ। और ये शेर भी कि सांस दर सांस गुंधी इश्क की मिट्टी मैंने, सांस दर सांस गुंधी इश्क की मिट्टी मैंने, लफ्ज दर लफ्ज कोई जहन में तामीर हुआ।
2: क्या बात,
0: लफ्ज दर लफ्ज कोई जहन में तामीर हुआ। और ये शेर भी कि एक पल में हुई काफूर उस औरत की खुशी, एक पल में हुई काफूर उस औरत की खुशी, किस रौनक से कोई शख्स बगलगीर हुआ।
1: क्या कहने,
0: किस रौनक से। बहुत शुक्रिया। एक पल में हुई काफूर उस औरत की खुशी, किस रौनक से कोई शख्स बगलगीर हुआ। और मकता है कि उसने नफरत का हदफ मुझको बनाया खुशबू, उसने नफरत का हदफ मुझको बनाया खुशबू, लफ्ज निकला जो जबां से तो कोई तीर हुआ।
1: क्या कहने, क्या कहने।
0: बहुत शुक्रिया। और ये गजल भी कि अब मोहब्बत को जरूरत आजमाने लग गई है, अब मोहब्बत को जरूरत आजमाने लग गई है, खुरदुरे हाथों की मेहंदी मुंह चढ़ाने लग गई है। बहुत शुक्रिया। अब मोहब्बत को जरूरत आजमाने लग गई है, खुरदुरे हाथों की मेहंदी मुंह चढ़ाने लग गई है। और ये कि ना खुदा के हाथ ढीले पड़ रहे हैं रफ्ता रफ्ता,
1: ना खुदा के
0: हाथ ढीले पड़ रहे हैं रफ्ता रफ्ता, क्या करूं कश्ती वफा की डगमगाने लग गई है।
2: क्या बात।
0: शुक्रिया। क्या करूं कश्ती वफा की डगमगाने लग गई है, क्या हुआ किस शान से कहते थे सबको मैं ही मैं हूँ। बतौर खास क्या हुआ किस शान से कहते थे सबको मैं ही मैं हूँ, आपकी सारी रौनक क्या ठिकाने लग गई है।
1: क्या बात।
0: बहुत शुक्रिया। आपकी सारी रौनक क्या ठिकाने लग गई है। और ये शेर की शोख सी बेबाक लड़की का यकीन टूटा है शायद, शोख सी बेबाक लड़की का यकीन टूटा है शायद, आईने से आज खुद नजरें चुराने लग गई है। बहुत शुक्रिया। आईने से आज खुद नजरें चुराने लग गई है। और ये शेर भी कि रात की रूठी हुई करवट ने काटी हिजरे मुद्दत, रात की रूठी हुई करवट ने काटी हिजरे मुद्दत, सुबह की पहली किरण फिर से मनाने लग गई है।
2: क्या बात है।
0: बहुत शुक्रिया। सुबह की पहली किरण फिर से मनाने लग गई है। और मकता है जब कोई कांधा मैसर ही नहीं मेरे लिए तो, जब कोई कांधा मैसर ही नहीं मेरे लिए तो, मेरी नाकामी ही खुशबू मेरे शाने लग गई है। बहुत शुक्रिया। मेरी नाकामी ही खुशबू मेरे शाने लग गई है। और एक गजल के चंद शेर के, रोशन हो गई शाम की बेला, दश्ते दिल में आहू आए, रोशन हो गई शाम की बेला, दश्ते दिल में आहू आए, यादों की पुरवाई चली और पलकों पर कुछ जुगनू आए। बहुत शुक्रिया। यादों की पुरवाई चली और पलकों पर कुछ जुगनू आए। ये शेर कि किसी के फोन ने एक मुद्दत पर आंखें मेरी जलथल कर दी, किसी के फोन ने एक मुद्दत पर आंखें मेरी जलथल कर दी, खुशी से थे लबरेज कटोरे सखियां समझी आंसू आए। और शुक्रिया। खुशी से थे लबरेज कटोरे सखियां समझी आंसू आए। और ये शेर बतौर खास कि कैद है दिल में लेकिन उसके पांव में भी जंजीर में डालू, कैद है दिल में लेकिन उसके पांव में भी जंजीर में डालूं, छोड़ के मुझको कहीं ना जाए काश मुझे वो जादू आए। बहुत शुक्रिया। छोड़ के मुझको कहीं ना जाए काश मुझे वो जादू आए। और ये शेर भी कि इश्क की कैसी मंजिल पर हूँ उस काफिर की दासी बनकर, इश्क की कैसी मंजिल पर हूँ उस काफिर की दासी बनकर, जिस जा नजरें फेरूं अपनी उसका चेहरा हरसू आए। और शुक्रिया। जिस जा नजरें फेरूं अपनी उसका चेहरा हरसू आए। और ये

0: शेर बतौर खास कि उसने लिखा तस्वीर पे मेरी बादल से निकला आधा चांद। उसने लिखा तस्वीर पे मेरी बादल से निकला आधा चांद, आधा चेहरा खुला हुआ है आधे पर है गेसु आया। बहुत शुक्रिया। आधा चेहरा खुला हुआ है आधे पर है गेसु आए। और मक्ता दुआओं के साथ कि आखिर कितना बोलूं उससे, क्या क्या बोलूं, आजिज हूं मैं। आखिर कितना बोलूं उससे, क्या क्या बोलूं, आजिज हूं मैं। कहता है बस कहती रहो तुम, कहने से भी खुशबू आए। कहता है बस कहती रहो तुम, कहने से भी खुशबू आए। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार कि आखिर दम तक मर्द ने रिश्ता कारोबारी रखा। आखिर दम तक मर्द ने रिश्ता कारोबारी रखा, नकद जहेज लिया था लेकिन मेहर उधारी रखा।
1: क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिर दम तक मर्द ने रिश्ता कारोबारी रखा, नकद जहेज लिया था लेकिन मेहर उधारी रखा। बहुत शुक्रिया। और मक्ता दुआओं के साथ कि हुलिया बदल कर ढोंग रचाना आता नहीं खुशबू को। हुलिया बदल कर ढोंग रचाना आता नहीं खुशबू को, अल्लाह वाली होकर भी खुद को संसारी रखा।
1: क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया।
2: ये बेहतरीन कलाम आप समाप्त कर रहे थे खुशबू परवीन साहबा से। अब मैं दावत देता हूँ नौजवानों के नस्ल के एक उमदा शायर जो यहाँ आज एक बुजुर्ग की हैसियत से तशरीफ फरमा है, मेरे जाति पसंदीदा बाल मोहन पांडे साहब।
3: बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आकाशवाणी के सभी सामीन का इस्तकबाल करता हूँ। बाल मोहन पांडे मेरा नाम है और कुछ शेरों से अपनी बात शुरू करता हूँ, सुनिएगा। एक मतला और एक शेर पहले देखिए कि जहाँ उबे हुए सब हैं वहीं तरसा हुआ मैं हूँ। जहाँ उबे हुए सब हैं वहीं तरसा हुआ मैं हूँ, सदा औरों को आती है पलट कर देखता मैं। जहाँ उबे हुए सब हैं वहीं तरसा हुआ मैं हूँ, सदा औरों को आती है पलट कर देखता
2: मैं हूँ। क्या बात।
3: और वो कहता था उसे जो भी तवक्को है खुदा से है।
4: क्या बात।
3: वो कहता था उसे जो भी तवक्को है खुदा से है, मगर मेरी तरफ यूं देखता जैसे खुदा मैं हूँ।
2: क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब।
3: वो कहता था, बहुत शुक्रिया। वो कहता था उसे जो भी तवक्को है खुदा से है, मगर मेरी तरफ यूं देखता जैसे खुदा मैं हूँ।
2: क्या बात।
3: एक मतलब और कुछ शेर देखिएगा कि मैंने आंखें खोल ली और शहर अब सोने को है। मैंने आंखें खोल ली और शहर अब सोने को है, एक तमाशा खत्म होने को है एक होने को है।
2: क्या बात, क्या बात।
3: मैंने आंखें खोल ली और शहर अब सोने को है, एक तमाशा खत्म होने को है एक
0: होने को है।
3: होने को है और वो किसी से हम सुखन है अंजुमन में। वो किसी से हम सुखन है अंजुमन में और हम डर रहे हैं जैसे अपने पास कुछ खोने को है।
2: क्या बात।
3: वो किसी से हम सुखन है अंजुमन में और हम डर रहे हैं जैसे अपने पास कुछ खोने को है।
2: क्या बात।
3: शेर है कि मशवरा देने लगे हैं वो और उनके पास मैं।

0: बात
1: क्या कहने,
2: बाल मोहन कितनी उजलत में भुला डाला उसे, जैसे तेरे पास कोई और दुख रोने को है।
0: क्या बात है,
2: बहुत खूब। एक गजल के कुछ शेर देखिएगा, बहुत शुक्रिया। मुझसे कम मिलता है वो, पर हम सफर मेरा भी है। मुझसे कम मिलता है वो, पर हम सफर मेरा भी है। हाँ जमाने का ज्यादा है, मगर मेरा भी है।
0: क्या बात है, बहुत खूब मुकर्रम।
2: मुझसे कम मिलता है वो, पर हम सफर मेरा भी है। हाँ जमाने का ज्यादा है, मगर
0: मेरा भी है,
2: मेरा भी है। और शेर बतौर खास देखिएगा कि आसमां की छत, खराबे की फजा, जंगल का शोर। आसमां की छत, खराबे की फजा, जंगल का शोर। इस हवाले से अगर देखो तो घर मेरा भी है।
0: क्या कहने, क्या कहने, बहुत
2: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आसमां की छत, खराबे की फजा, जंगल का शोर। इस हवाले से अगर देखो तो घर
0: मेरा भी है,
2: मेरा भी है। और यूं जो मैं बेजान हूं, दो रोज का मेहमान हूं।
0: क्या बात।
2: यूं जो मैं बेजान हूं, दो रोज का मेहमान हूं, इसमें कुछ दुनिया की मेहनत, कुछ हुनर मेरा भी है।
0: क्या बात।
2: यूं जो मैं बेजान हूं, दो रोज का मेहमान हूं, इसमें कुछ दुनिया की मेहनत, कुछ हुनर मेरा भी है। और तुझसे रिश्ता कुछ नहीं, बस तेरी आंखें देखकर। तुझसे रिश्ता कुछ नहीं, बस तेरी आंखें देखकर, ऐसा लगता है जमी पे एक घर मेरा भी है।
0: क्या बात।
2: तुझसे रिश्ता कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। तुझसे रिश्ता कुछ नहीं, बस तेरी आंखें देखकर, ऐसा लगता है जमी पे एक घर
0: मेरा
2: भी है। और हिजर से डरना समझदारी नहीं मोहन, हिजर से डरना समझदारी नहीं मोहन, मगर क्या करूं इस खौफ से सजदे में सर मेरा भी है।
0: क्या बात है,
1: क्या कहने।
2: क्या करूं इस खौफ से सजदे में सर
0: मेरा भी है,
2: मेरा भी है। आखिर में एक नज्म है,
0: इरशाद
2: बतौर खास सुनिएगा। मुद्दतों बाद तुम्हें आज कहीं पर देखा, और अब आईना भी देख नहीं पाता हूं। आज वाबस्ता नहीं तुमसे मेरी राह हयात, फिर भी इस बारे नदामत से दबा जाता हूं। जिससे रोशन थी मसर्रत की शुआएं तुम में, किसकी सोहबत ने वो एहसास नहीं रहने दिया। अपनी ही शक्ल उभरती है मैं जब सोचता हूँ, तुमको किस शख्स ने हसास नहीं रहने दिया।
1: ओहो, क्या कहने।
2: जिससे रोशन थी मसर्रत की शुआएं तुम में, किसकी सोहबत ने वो एहसास नहीं रहने दिया। अपनी ही शक्ल उभरती है मैं जब सोचता हूँ, तुमको किस शख्स ने हसास नहीं रहने दिया। कल की ही बात है, बागों से गुजरती हुई तुम, तितलियां देख के हैरान हुआ करती थीं, कोई हंसते तो खिला लेती थी होंठों।

0: बिलखने लगती, सारे जज्बात की मखसूस सुकूनत तुम थी। कभी खुश होती कभी पल में बिलखने लगती, सारे जज्बात की मखसूस सुकूनत तुम थी। तुमको पत्थर में बदलता हुआ कैसे देखूं, आज कुछ भी हो मेरी पहली मोहब्बत तुम थी।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या उम्दा नज्म है। बहुत शुक्रिया बाल मोहन पांडे साहब, उम्दा कलाम और बेहतरीन नज्म। अब यहीं पे ये आकाशवाणी का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है।
2: सामईन, अभी आप लुत्फ अंदोज हो रहे थे प्रोग्राम बज्म नौ बहार के तहत इस खूबसूरत से मुशायरे से। शुरका थे नवेद यूसुफ, बाल मोहन पांडे, खुशबू परवीन और निजामत कर रहे थे अबूजर फातमी। इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत।

印度的立广播电台，从印度时间5:15到6:45和16:17向亚洲播送普通话节目，播长是13795千赫。您正在收听全印度电台应用程序。

阿萨木邦伊、阿萨木邦察赫、阿萨木邦西闻名。夜上动物旅要朱离阿萨木邦的经济。听众朋友们，继续收听阿萨木邦的民间。

0: वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य को बदल दिया है। उनका करियर स्वदेशी नवाचार की शक्ति का प्रमाण है जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है।
1: Receiving the Padma Shri, Dr. Iyengar's most significant innovations are Drishti visibility imaging system and aviation weather observation system, which have enhanced the safety of all Indian international airports as they are mandatory
2: Shri
1: equipments.
2: Shri T. T. Jagannathan, Marnoprant, Vyapar Evam Udyog, Unke Putra, Shri Mukund Thatte.
0: Shri Jagannathan ko Marnoprant पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, जो उनके पुत्र रिसीव करेंगे। 9 अक्टूबर 2025 को श्री जगन्नाथन का निधन हो गया था। आप भारत की सबसे बड़ी रसोई उपकरण और कुकवेयर कंपनी टीटी के प्रेस्टिज लिमिटेड का नेतृत्व 5 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने किया था।
1: As chairman of the TTK Group, श्री जगन्नाथ built a reputation for quality, innovation,
2: संत निरंजन दास जी अध्यात्म।
0: और अगला नाम पुकारा गया है पद्मश्री के लिए संत निरंजन दास जी, जो विश्व प्रसिद्ध डेरा सचखंड पल्लान के वर्तमान आध्यात्मिक प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गोविंद रविदास जन्मस्थान मंदिर सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
1: Since August 9, 1994, संत निरंजन दास जी has been leading डेरा सचखंड पल्लान। His tenure has been marked by unparalleled contributions to social welfare. He oversees the Sant Sarvandas Charitable Hospital in Jalandhar, a 150-bed multi-speciality facility providing affordable care.
2: Professor Vijayanathan Kamakoti, Vigyan Evam Engineering.
0: IIT Madras Chennai के निदेशक प्रोफेसर विजयनाथन कामकोटि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को मुख्य उत्पादों में बदलने हेतु अपने करियर को समर्पित करने के लिए जाने जाते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
1: In the academic realm, Shri Kamakoti has guided around 20 PhD and 30 MS by research scholars. He has published over 200 extensively cited papers in international
2: Professor Mangala Kapoor, साहित्य एवं शिक्षा शास्त्रीय संगीत।
0: अगला नाम पुकारा गया है प्रोफेसर मंगला कपूर का। आप एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका संगीतज्ञ शिक्षाविद हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में म्यूजिक में पीएचडी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और कई साल लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा की और वर्ष 2019 में संगीत विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हैं।
1: प्रोफेसर कपूर हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक थ्रू परफॉर्मेंस एंड रिसर्च। शी इज ऑथर ऑफ द 5 बुक्स ऑन म्यूजिक इंक्लूडिंग हर ऑटोबायोग्राफी सीरत।
0: प्रोफेसर मंगला कपूर माननीय राष्ट्रपति से पद्मश्री ग्रहण करते हैं।
2: डॉक्टर अशोक खाड़े व्यापार एवं उद्योग।
0: अगला नाम डॉक्टर अशोक खाड़े का। आप डीएलएस ऑफशोर लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, जो व्यापक रूप से एक अग्रणी टेक्नोक्रेट उद्यमी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत की स्वदेशी अपतटीय इंजीनियरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करने और विदेशी संविदाकारों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: डॉक्टर खाड़े बिगेन हिज प्रोफेशनल करियर इन 1975
2: ल्यूडमिला कोकलोवा
1: मुंबई
2: साहित्य एवं शिक्षा
1: वेयर ही वर्क इन स्ट्रक्चर डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल।
0: और अब अगला नाम कोकलोवा। डॉक्टर कोकलोवा को भारतीय भाषा शास्त्र विभाग एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रूस में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे इंडोलॉजिकल अध्ययन में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में वो प्रसिद्ध हैं।
1: At present, Dr. Kokolova is teaching different linguistic courses at Moscow State University, which are very popular among students. Hindi at BA and MA in

0: मेधावी।
1: आप एक दूरदर्शी नेता, एक विख्यात शिक्षाविद और ग्रामीण उत्थान के लिए एक अथक योद्धा हैं। डॉक्टर कोरे का जीवन देश की स्वावलंबन और शैक्षिक उत्कृष्टता की यात्रा का दर्पण है।
0: Among his most significant achievements is the establishment and development of two universities, KLE Academy and Higher Education and Research, KHER, and KLE Technological University.
2: Shrimati Pakhila Lekthepi Kala Karbi Geet.
1: Shrimati Pakhila Lekthepi असम की करबी गीतों के प्रसिद्ध गायिका हैं। वर्ष 1978 में उन्हें आकाशवाणी गुवाहाटी में गाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने करबी आधुनिक और लोकगीत प्रस्तुत किए। उन्होंने दूरदर्शन गुवाहाटी में भी करबी आधुनिक गीत प्रस्तुत किए।
0: श्रीमती लेखथेपी स्टार्टेड कंपोजिंग ओन सॉन्ग एंड लिरिक्स ऑन करबी मॉडर्न सॉन्ग इन द ईयर 1975 फॉर करबी यूथ फेस्टिवल्स। शी गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर हर ओन कंपोजिशन लिरिक सॉन्ग इन करबी यूथ फेस्टिवल इन 1976। Attired in a traditional
1: पारंपरिक परिधान में, असम के परिधान में, माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और उनके परिजन उनके लिए ताली बजाते हुए।
2: श्री रामा रेड्डी मामिदी मरणोपरांत सहकारिता, उनकी पत्नी श्रीमती श्यामला रेड्डी।
1: श्री रामा रेड्डी मामिदी को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, जो उनकी पत्नी माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। आप भारत में व्यापक रूप से आधुनिक सहकारी कानून के मुख्य निर्माता के रूप में जाने जाते थे।
0: श्री मामिदी's achievements have transformed rural livelihoods, established 585 thrift and credit cooperatives benefiting over 2.69 lakh members in Telangana with an annual turnover of 570 crore. श्री मामिदी passed away on 26th October 2025 and the award is received by her wife.
2: Shri Ra Vesu Mani, Civil Seva.
1: Shri RVS Mani, एक सुपर परिचित सिविल सेवक हैं। श्री मणि ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी। अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही उन्हें चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं का सामना करना पड़ा। श्री मणि एक निष्ठावान सरकारी सेवक के रूप में पूरी तरह से राजनीति निरपेक्ष रहकर कार्य किया।
0: श्री मणि has written 5 books of national importance and has worked as a sincere government servant in an apolitical manner. Credits were given to him for handling several sensitive cases without falling prey to any
2: Kala Mandalam Vimla Menon Kala
1: मोहिनीअट्टम। आप वर्तमान मोहिनीअट्टम शैली के पीछे की दृष्टि और प्रेरणा है, चाहे वो इसकी सुंदरता, वेशभूषा, केशभूषा, वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि प्रस्तुति पैटर्न का तरीका हो, जो आज मोहिनीअट्टम की पहचान बन चुका है।
0: श्रीमती मेनन फ्रॉम द यंग एज रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ आर्ट एज ए नेशंस वाइटल सॉफ्ट पावर एंड डेवलप्ड हर जर्नी टू यूजिंग क्लासिकल डांस एज ए मीडियम फॉर पीस, यूनिटी, इंक्लूजन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट।

0: श्री व्लादिमीर मिस्ती वरिशवली मरणोपरांत खेल कुश्ती कोच, उनकी पत्नी श्रीमती मरीन सारिया।
1: 23 जून 2025 को इनका निधन हो गया था और मरणोपरांत व्लादिमीर मिस्ती वरिशवली को ये पद्मश्री सम्मानित किया जा रहा है, जो एक फ्री स्टाइल कुश्ती कोच थे। उनकी पत्नी ये सम्मान ग्रहण करते हुए माननीय राष्ट्रपति के कर कमरों द्वारा।
2: He is remembered as one of the greatest coaches in the world of freestyle wrestling, having trained numerous Olympic medals.
0: Shri Maganti Murli Mohan, Kala, Film, Abhinay.
1: श्री मुरली मोहन एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और 85 वर्ष की उम्र में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सदस्य रहे और आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी आपने कार्य किया।
2: In 1973, श्री मुरली मोहन entered the film industry and recently completed Golden Jubilee of his film career. He received numerous honors and played lead roles in over

0: 350 films.
1: Shri Mohan Nagar, Samaj Seva.
2: मध्य प्रदेश की जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और भारत भारती शिक्षा समिति बैतूल के सचिव श्री मोहन नागर को मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और शैक्षिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है।
0: श्री नागर हैज हैड लेड सेवरल लैंडमार्क कैंपेन्स। इन 2006 ही अंडरटूक ए पदयात्रा टू एडवांस एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मोबिलाइजिंग लोकल कम्युनिटीज to institutionalize Jal Mahotsav, a river festival in the Mathura River
1: Punni
0: catchment
1: Murti
0: area.
1: Dr. Punyamurthy Nateshan, Pashu Chikitsa.
2: Dr. Punyamurthy Nateshan, a pratishthit Pashu Aushadh Vigyani, शिक्षाविद और ट्रांसलेशन वैज्ञानिक है। उन्होंने चार दशकों से अधिक के शिक्षण अनुसंधान और प्रसार कार्य के माध्यम से भारत में एथनो वेटरनरी चिकित्सा को उन्नत किया है।
0: A nationally and internationally acknowledged expert, Dr. Nateshan has served as a trainer and consultant to organizations
1: Shri
0: such as
1: Sarat
0: Department of
1: Kumar
0: Animal Husbandry
1: Patra,
0: and Dairying.
1: Kala Ikat Bunai.
2: और अगला नाम पुकारा गया है श्री सरत कुमार पात्र का। आप एक प्रसिद्ध हर कलाकार शिल्पकार हैं जो इकत बुनाई में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। श्री पात्र द्वारा अतिरिक्त पाना तकनीक से बुने हुए कोणार्क वर्ष एक उल्लेखनीय कृति है।
0: Shri Patra's Konark textile using extra weft technique is another remarkable work. He successfully developed nearly 50 shades using natural dyes. His efforts in creating human figures and calligraphic art based on some famous literary arts. An eminent handloom craftsman who is widely known for his contribution in ikat weaving.
1: Shri Simanchal Patra, Kala लोक रंगमंच।
2: श्री श्रीमांचल पात्र लोक रंगमंच की दुनिया के एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। उन्हें कला जगत में भारत के एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच प्रहलाद नाटक की भीष्म पितामह के रूप में जाना और सम्मानित किया जाता है। ये नाटक अपने जीवंत संगीत नाटकीय कथ्यों और सशक्त पात्रों के लिए जाना जाता है।
0: Born on 7th July 1927, श्री Patra hails from a poor rural family. And as per family tradition and culture, he is inclined to Vaishnavism. Shri Patra, from the age of 7, learnt Sakhi Nata, said to be precursor of classical Odissi dance, where male boys act as female Sakhi, from Guru Shri Narsingh Pradhan.
1: Guru Sangyu Sang Ponganar, Kala लोक कला।
2: गुरु पोंगनर नागा वादी वेलफेयर कल्चरल क्लब के सह संस्थापक हैं। वो इसकी स्थापना के बाद से लोक नृत्य संगीत और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। और आप सुन पा रहे हैं वो क्योंकि अपने पारंपरिक परिधान में यहाँ पधारे हैं तो सभी लोग बहुत खूबसूरत सा परिधान है नितिश, पारंपरिक परिधान है और इन्हें इनकी असाधारण उपलब्धियों और एओ नागा लोक कलाओं के अभिनव योगदान के फलस्वरूप यह प्रसिद्धि मिली है।
1: गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद, कला अभिनय।
0: श्री गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद इज ए फेमस तेलुगु फिल्म एक्टर। For over four decades, starting with his debut in 1977, Shri Gadde Babu graced more than 286 films across six languages, even stepping into international waters. His genius lies in his special touch, versatile roles in family stories, social messages and comedy that
2: सभी
0: hit home blended
2: सभी
0: with skills like
2: सभी को घूम के उन्होंने घूम घूम के नमस्कार किया और अब माननीय राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं मुस्कुराते हुए और पर्दे के पीछे नम्र मेहनती और बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के अपने मध्य वर्गीय संस्कारों से जुड़े हुए श्री गद्दे बाबू
1: सुश्री सविता पुनिया खेल हॉकी।
0: Ms. Savita Punia, the former captain and the current goalkeeper of the Indian women's national field hockey team, is one of India's most acclaimed sports personality. With an unprecedented 308 international caps, she is the first Indian woman goalkeeper to achieve this extraordinary milestone, exemplifying enduring resilience, skill and commitment. Truly the wall.
2: बिल्कुल भारतीय महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और वर्तमान गोलकीपर सुश्री सविता पूनिया

0: माननीय राष्ट्रपति
1: श्री कबीरपुर कायस्थ मरणोपरांत लोक कार्य उनके पुत्र श्री कनद पुरकायस्थ।
0: अगला नाम श्री कबीरेंद्र पुरकायस्थ, जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को आपका निधन हो गया था। आप असम के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व थे।
2: श्री कबीरेंद्र पुरकायस्थ ब्रीथ हिज लास्ट ऑन 7th जनवरी 2026 एंड

0: और आवश्यक जो जानकारी के साथ मुहैया कराने के साथ साथ में हम उनको अलग अलग सेक्टर के इंडस्ट्री अटैच कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्लांट बन सकता है तो वहां बायो सीएनजी कैसे बनेगी, बायो सीएनजी का पंप लगाने में भी सरकार उनकी मदद भी कर रही है, साथ साथ में लाइसेंस भी दे रही है और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी काफी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है और जो नई तकनीक आई है बायोगैस की उसको जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि अब विकल्प के तौर पे नहीं, आपको बायोगैस को ही प्रयोग करना है, अपने खेतों का उत्पादन बढ़ाना है, अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रखना है और यहाँ तक कि जो वातावरण उसको भी साफ रखना है। डॉक्टर जेपीएस डवास जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रीता बहन, ये तो हमारे भाई जानकारी ले रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी का विकल्प बायोगैस, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जयप्रकाश डबास, आप पूर्व प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल जी। देखिए काफ़ी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने कि भाई देखिए किस तरह से एलपीजी का विकल्प आप बायोगैस लगा के कर सकते हैं और इससे काफ़ी फायदे उन्होंने बताए। साथ ही बताया कि भाई देखिए इससे पर्यावरण का भी जो ये पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है
3: मदद करता है, और इससे अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो वनों की जो कटाई है ना वो भी कम होती है, समय की तो बचत होती है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें लकड़ी इकट्ठा करने की जरूरत पड़ जाती है और महिला और जो बच्चे हैं ना वो धुएं से होने वाली समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो भाई ये तो जानकारी थी बहुत उपयोगी।
2: और भाई देखिए हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभी बहन भाइयों को यही कहेंगे कि भाई आप भी देखिए एलपीजी का विकल्प बायोगैस चुन सकते हैं और आसानी से आप बायोगैस लगवा सकते हैं। सीता बहन, बातचीत हो गई, जानकारी हो गई, भाई आप बात मनोरंजन की आ रही है, तो
3: आइए अब हम सुनते हैं ये लोक हम सुनते हैं रागिनी रोशन लाल और प्रीति रोशन से।

0: रीता बहन, ये तो भाइयों ने रागनी सुनी रोशन लाल व प्रीति रोशन से, और किस्सा था सत्यवान सावित्री का। और देखिए, सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों के हम विशेषकर बात करें तो लोगों के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य की तरफ उनका तरफ ध्यान दिया जा रहा है। इसी कदम में राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर 2014 में की गई। और इसका जो मुख्य उद्देश्य अगर बात करें तो इसमें देखिए, लागत प्रभावी सुलभ न्याय संगत आयुष, और जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी सेवाएं प्रदान करते हैं।
1: जी हाँ, आपने बहुत ही सही कहा कि जो भारत सरकार ने ये योजना शुरू की है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आयुष चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना और आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास करना, औषधीय पौधों की जो खेती है ना उसको भी बढ़ावा देना, आयुष शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करना, लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच जो है ना वो बढ़ती जा रही है, कम लागत में उपचार उपलब्ध होता है, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। तो ये जो योजना है बहुत ही लाभकारी है। और अगर हम बात करें आयुष योजना की, तो आयुष का ही मतलब होता है जो हमारे पारंपरिक आयुर्वेद है, योग, प्राकृतिक चिकित्सक, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं।
0: और इतना ही नहीं, देखिए इसमें आयुष स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ आयुष शिक्षण संस्थाओं का उन्नयन, औषधीय पौधों की खेती और कच्ची सामग्री का जो सतत प्रबंधन किया भी गया है। और देखिये, जो औषधीय पौधों से हमारे किसान भाइयों को भी काफी आमदनी होती है अगर वो औषधीय पौधों की खेती करते हैं। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल, ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7 बजने ही वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: जय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी करियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
2: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज्बेकिस्तान से। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वहीं सुबह 4:30 क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 7:05 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: सरिता बहन, देखिए सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए, साथ ही भूमि की सेहत के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी हाल ही में सरकार द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया गया, खेत बचाओ अभियान, और खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा, यदि किसान संतुलित खाद का प्रयोग करे, मिट्टी की जांच कराए और वैज्ञानिक खेती अपनाए तो कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश की जो कृषि व्यवस्था है वो मजबूत होगी। तो ऐसे में आज
0: खेत बचाओ अभियान के तहत संतुलित खाद, मृदा स्वास्थ्य जांच और वैज्ञानिक खेती द्वारा अधिक उत्पादन कैसे लें, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली में और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल जी।
2: किसान भाई राम राम। फसलों के उत्पादन के लिए हमें मृदा का उपजाऊ होना बहुत जरूरी होता है, और जब मृदा का स्वास्थ्य खराब होता है तो निश्चित तौर पे हमारे जो फसलों का उत्पादन गिर जाता है और उसकी वो गुणवत्ता नहीं रहती है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया, खेत बचाओ अभियान। और खेत बचाओ अभियान क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि संतुलित खाद का उपयोग, मृदा स्वास्थ्य की जांच और वैज्ञानिक खेती द्वारा किस तरीके से किसान भाई आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजेश यादव जी। ब्रजेश यादव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू सर।
2: तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जो खेत बचाओ अभियान चलाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
3: जैसे कि भारत सरकार द्वारा इस समय एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि 1 जून से लेकर के 30 जून तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के किसानों को उनके खेत में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में जागरूक करना, उनको समय समय पे गांव-गांव में जाकर के कैंपेन करना। जो भी है कि मिट्टी में देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें असंतुलित हो गई हैं, जब तक हम अपने खेत की मिट्टी की जांच नहीं कराएं, जिससे कि उनको पता नहीं चलता कि उस खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है। और किसान भाई जो भी अगली फसल ले रहे हैं बिना जांच के अनुसार अंधाधुन अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बैलेंस रूप में नहीं है। इसलिए सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि वो अपने खेत की मिट्टी के बारे में जाने, क्योंकि मिट्टी से ही जो भी हम सुबह से शाम तक भोजन लेते हैं 80-90% कहीं ना कहीं वो मिट्टी से आ रहा है। लेकिन मिट्टी में ये भी है कि मिट्टी दिनों दिन हमारी अधिक से अधिक उसमें रासायनिक खादों का उपयोग करने से उसमें मिट्टी का भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणों का ह्रास हो रहा है, जिसके कारण देखा जा रहा है कि उत्पादकता में कमी आ रही है, साथ ही साथ जो गुणवत्ता युक्त उसमें प्रोडक्शन है वो नहीं आ रहा है। तो इसलिए सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जो देश की अपनी मिट्टी है उसमें समय समय पे किसान, उसमें वैज्ञानिक उनके गांव तक जाएं और उनके खेत के बारे में जो भी है मिट्टी की समस्या उसके बारे में किसानों को जागरूक करें।
2: तो आप जब गांव में जाते हो तो किसानों को क्या क्या बताते हो?
3: जैसे कि हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, हम दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से हैं, तो हम लोग जो दिल्ली के क्षेत्र के गांव हैं वहां गांव-गांव जा करके अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट उनको किसानों को जागरूक करते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि यहां दिल्ली का क्षेत्र में मोस्टली आपका सलाइन वाटर है, तो सलाइन वाटर होने के कारण जो मिट्टी है किसान की उसमें भी आपका अधिक से अधिक इरिगेशन करने से खारापन आ गया है। लेकिन किसान को पता नहीं चल रहा है कि इसमें मिट्टी का हमारे उनके पीएच मान क्या है, या उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना परसेंट है, या उसमें जो भी फसल लगा रहे हैं तो उसमें कितनी मात्रा में पोषक तत्व देना है और कौन कौन से उर्वरक देना है। तो इसके बारे में किसान को जागरूक कर रहे हैं। एक चीज और है कि किसान भाई का खेत खाली रहता है, जनरली आपके गर्मी के मौसम में लगभग सभी किसानों का खेत खाली रहता है, तो उस दौरान उनको अवेयर करते हैं कि अपने खेत की मिट्टी की जांच समय समय पर जरूर कराएं, जिससे कि उनको पता चले कि उनकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है या अधिकता है।
2: जी, तो मिट्टी की जांच किस तरीके से कराएं और इसका क्या महत्व है?
3: जैसे कि किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि किसान भाइयों, इस दौरान आपका खेत खाली है तो जनरली आपका 1 एकड़ खेत है, तो 1 एकड़ खेत से आप 8-10 पॉइंट से मिट्टी का नमूना लेते हैं। एक खेत से चारों तरफ से 1-1 मीटर बॉर्डर छोड़ करके जिगजग तरीके से लेते हैं और फसलों के अनुसार गहराई रखते हैं। जैसे सीरियल्स क्रॉप है या सब्जियां हैं, जो भी फसलें लेते हैं इसमें 0-15 सेंटीमीटर डेप्थ से मिट्टी का नमूना लेकर के 8-10 पॉइंट से उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसमें अपना नाम, गांव, आधार कार्ड नंबर, ये सब डिटेल जानकारी लेकर के आप नजदीकी अपने

0: विज्ञान केंद्र में दे सकते हैं, साथ ही साथ या नजदीकी कोई सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है वहां दे सकते हैं, जिससे किसान भाई को उन मिट्टी में कौन सी समस्या है उसका पता चल जाता है। जनरली एक किसान भाई, इसमें एक चीज और है कि मिट्टी का सैंपल लेते समय कुछ किसान भाई सावधानियां रखते हैं, जैसे कि कभी भी मिट्टी का सैंपल खाली खेत से लेना चाहिए, या जो भी यंत्र यूज कर रहे हैं आपका वो जंग खाया नहीं रहना चाहिए, या जो भी पॉलिथीन आप ले रहे हैं वो आपका साफ सुथरी होनी चाहिए, या आपके जैसे खेत खाली होने के बाद कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि गोबर की खाद खेत में बिखेर देते हैं, तो उसके बिखेरने से पहले मिट्टी का नमूना सैंपल लेना चाहिए, या आपके खेत में कोई पेड़ है तो उसके पेड़ के नीचे से भी मिट्टी का सैंपल नहीं लेना चाहिए। अगर आपका किसान भाई प्रॉपर अगर नमूना लेने का तरीका सही है तो आपका रिजल्ट भी सही आएगा, जिससे आपको भली बात है अपने खेत की मिट्टी की स्टेटस पता चलेगा, जिसमें अगली फसल के लिए आप उसका उचित प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो अधिक से अधिक आप उत्पादन ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, लेकिन बीच में मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने थे, ये किस तरीके से उपयोगी हैं किसान भाइयों के लिए?
0: जी, जैसे कि भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, इसका भी मुख्य उद्देश्य था कि देश के जितने भी किसान हैं उनके खेत की मिट्टी की जांच करके उनका जो मिट्टी का स्टेटस है, मिट्टी का जो हेल्थ है, उसका एक रिपोर्ट के माध्यम से देना, जिससे कि किसान उस तरीके से खेत में उनकी मिट्टी का जो गुण है, जैसे भौतिक गुण में आपका उनका पीएच मान अम्ली है या क्षारी है, या उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना परसेंट है उसका एक्चुअल पता चलता था, और साथ ही साथ आपका जैसे उसमें नाइट्रोजन परसेंट कितना है, पोटेशियम कितना है, फास्फोरस कितना है, और साथ ही साथ आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक कॉपर आयरन बोरान मैग्नीज आदि का पता करके उसका टेस्ट के आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसान को उनके मिट्टी में जो स्टेटस है न्यूट्रिएंट्स का उनको बताना, और साथ ही साथ जो भी वो किसान भाई फसल ले रहे हैं उसके अनुसार उसमें रिकमेंडेशन भी दी जाती है कि आपको अगली फसल जो भी नेक्स्ट ले रहे हैं उसमें आपको इतनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है, साथ से साथ आपका जैविक खाद का इतनी मात्रा में उपयोग करना है, जो भी है वो संतुलित तरीके से उपयोग करना है, जिससे कि इस तरीके से आप अच्छी तरह प्रबंधन करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जो मिट्टी की जांच होती है उसमें क्या कुछ गिने हुए पोषक तत्वों की जांच की जाती है, या जितने भी आवश्यक फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्व होते हैं सभी की जांच हो जाती है?
0: जैसा कि इसमें जो भी है, अब पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है
1: जी,
0: लेकिन जनरली आपको देखा जा रहा है कि तीन तो नेचर से किसान भाइयों को मिल जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बाकी जो 14 पोषक तत्व हैं वो किसान भाई को किसी न किसी रूप में रासायनिक खाद के रूप में या जैविक खाद के रूप में देना पड़ता है। इसके लिए जो भी है सॉइल टेस्ट में ये सब चीजें टेस्ट होती हैं, जैसे आपका जो प्राथमिक पोषक तत्व है, सेकेंडरी पोषक तत्व है, या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सभी जांच जरूरी है, जिससे कि आपको पता चले कि उनके खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है या अधिकता है। कहीं कहीं देखा जा रहा है कि किसान भाई डीएपी के बाद डीएपी भी दे रहे हैं, लेकिन डीएपी में जनरली आपका 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होता है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा उपलब्ध है, लेकिन किसान को ये नहीं पता है कि इसमें फास्फोरस उपलब्ध है, नेक्स्ट फसल में कितनी मात्रा में देना है, तो वो एक्सेस मात्रा में हो जाता है। तो इसलिए जब तक वो अपने मिट्टी की जांच नहीं कराते तब तक उनको पता नहीं चलता कि आपको अगली फसल लेनी है तो कितनी मात्रा में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है।
1: जी डॉक्टर साहब, मिट्टी की जांच कराने के बाद किस तरीके से उर्वरकों के संतुलित उपयोग में मदद मिलती है?
0: जैसे कि मिट्टी के जांच हम जब कराते हैं तो उसमें सभी उर्वरकों के बारे में, जैसे क्या होता है कि जो भी फसलें होती हैं उसकी अलग अलग रिकमेंडेशन होती है फर्टिलाइजर की, जैसे तिलानी है तो उसमें सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें विस्तृत जानकारी लिखी रहती है कि जो भी आप दलहन या तिलहन ले रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन कितनी मात्रा में देना है, या फास्फोरस कितनी मात्रा में देना है, या आपको पोटेशियम कितनी मात्रा में देना है, और सल्फर कितनी मात्रा में देना है, साथ ही साथ आपका जो भी जैविक खाद है कितनी मात्रा में देना है, वो विस्तृत जानकारी सॉइल हेल्थ कार्ड पे लिखी रहती है। अगर किसान उसको पढ़ करके अच्छी तरह से प्रबंधन करें तो वो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकता है।
1: डॉक्टर साहब, मिट्टी की जांच करा के, पानी की जांच करा के उस तरीके से किसान भाई अपनी लागत में भी कमी ला सकते हैं?
0: जी, जैसे कि एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया कि जो भी किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसका उचित प्रबंधन खाद उर्वरकों का और वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, जो भी उसमें सिफारिशें दी गई है, तो देखा जा रहा है कि 6-7% उनको उत्पादन में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ लागत कास्ट में कमी हो रही है। जैसे कि किसान को पता नहीं है कि उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है, अगर मिट्टी जांच के उपरांत उनको पता चल जाता है कि इसमें कोई इतनी मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध है और अलग से इतनी मात्रा में देनी है, तो उस हिसाब से किसान को काफी हद तक फायदा मिल रहा है।
1: डॉक्टर साहब, क्या जैविक खाद है, गोबर की खाद है, इसके प्रयोग से संतुलित उर्वरक प्रबंधन में मदद मिलती है?
0: जी, जैसे अगर जिस किसान भाई के पास जैविक खाद

0: उपलब्धता अच्छी तरह है तो वो अधिक से अधिक जैविक खाद का, जैसे गोबर की खाद हुआ, केचुआ खाद हुआ, या वेस्ट करके उसको डिकम्पोज करके जो भी है जैविक खाद बना सके, उसका उपयोग करने से किसान लाभ ले सकता है। या जिस किसान भाई को इसकी उपलब्धता कम से कम है तो वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में कुछ भाग आपका जैविक खाद के रूप में, कुछ भाग रासायनिक खाद के रूप में मिश्रित करके देने से उसको अधिक से अधिक लाभ मिलता है।
1: जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। और कहते हैं कि अब हमारे देश में जो मृदा है उसमें ऑर्गेनिक मैटर के कमी होते जा रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए किसान भाई कौन सी फसलें लें, कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें, कौन सी खाद डालें?
0: जैसे कि देखा जा रहा है कि जो जनरली आप पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे तो जैसे ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत ही कमी है, जनरली 80% मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। अगर इसकी मात्रा हमें बनाए रखनी है तो अधिक से अधिक किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक गोबर की खाद का उपयोग करें, अधिक से अधिक केचुआ खाद का उपयोग करें, या आपका फार्म का कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उसका उपयोग करें, या जिस किसान भाई को ये भी उपलब्ध नहीं है अगर है तो उसके लिए किसान भाई इस दौरान अपने खेत में जैसे ढांचा लगा सकता है। ढांचा लगाने के बाद अपने खेत में बिजाई करने से 50 दिन के अंदर खेत में पलटाई करने से उससे भी ऑर्गेनिक कार्बन इंप्रूव होता है, साथ ही साथ अगली फसल के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है, अगली फसल में आप यूरिया की मात्रा भी कम दे सकता है, इससे भी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य की बात करें तो इसका आपस में किस तरीके से संबंध है?
0: जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य दोनों का एक खेतीबाड़ी में अच्छा महत्व है। जैसे कि जल से ही हमें इरिगेशन वाटर का ही भी इफेक्ट काफी है। जैसे भारत में देखा जा रहा है कि कहीं कहीं सलाइन वाटर हो गया, खारा हो गया, तो उससे के कारण भी हमारी मिट्टी खराब हो रही है। जनरली हम दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पे पानी की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है, तो जिससे कि वो किसान भाई चाहते हुए भी अपनी सभी फसल नहीं ले सकता। जैसे खारे पानी का एक ICR का संस्थान है, केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है, उनकी बहुत सारी वैरायटी भी डेवलप है खारे पानी पे, तो उसको भी किसान अपने पानी की जांच करा करके पानी की जो गुणवत्ता के अनुसार फसल का चयन कर सकता है। जैसे उनकी बहुत सारी वैरायटी है, मस्टर्ड की भी है, और जैसे CS60, CS64, CS62, और इसी तरह आपकी व्हीट की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि KRL10, KRL19, साथ ही साथ उनकी संस्थान की एक वैरायटी है करनाल चना 1 के नाम से, इसी तरह और भी वैरायटी है अलग अलग फसलों की। लेकिन उसमें मोस्टली किसान भाई को अपने खेत में जो भी आपका पानी उपयोग कर रहे हैं उसका अच्छी तरह वो किसान भाई को जांच कराना पड़ेगा। जांच कराने से पता चलता है कि जो पानी की गुणवत्ता है इसमें कौन सी फसल होगी या नहीं होगी, तो इसलिए पानी और मिट्टी का संबंध एक साथ ही हम जोड़ के देखते हैं। चूंकि पानी खराब होगा तो कहीं ना कहीं पानी देने से मिट्टी भी हमारी खराब होती है, तो इसलिए दोनों का अच्छा होना फायदेमंद है किसान के लिए।
1: डॉक्टर साहब, अब क्योंकि खेतीबाड़ी पुराने तरीके की नहीं है, अब आधुनिक तकनीक भी आ गई है, किसान भाई ड्रोन है, सेंसर है, मोबाइल ऐप का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे खेती में क्या सुधार होने की संभावना है?
0: इससे जैसे किसान को त्वरित समाधान हो जाता है। जैसे सेंसर बेस, जैसे कहते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जैसे कि सेंसर बेस है, जैसे मिट्टी में कितना मॉइस्चर है, तो इसके आधार पे किसान को तुरंत पता चल जाता है कि इतने % मॉइस्चर की कमी है, तो सेंसर से ही किसान को पता चल जाता है, तो उसके आधार किसान सिंचाई के प्रबंधन करता है। कुछ सेंसर आधारित आपके जो फर्टिगेशन का भी उपयोग आ रहा है, जिसमें कि फर्टिलाइजर की का भी देखा जा रहा है, जैसे नाइट्रोजन की उपलब्धता क्या है या मिट्टी का टेक्सचर स्ट्रक्चर जो भी है, फिजिकल जैविक भौतिक गांव जो इतने भी होते हैं, ये सब उससे पता चल जाता है जैसे खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है या मिट्टी की जो भी संरचना है, इसके अनुसार हम कैसे किसान को फायदा ले सकते हैं।
1: अंत में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो खेती में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, अधिक से अधिक जो जैविक उर्वरक है देसी खाद का प्रयोग करें और रासायनिक उर्वरकों को का प्रयोग कम करें?
0: किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे जैसे सरकार द्वारा एक इस समय अभियान भी चल रहा है, खेत बचाओ अभियान, उसका मुख्य उद्देश्य है कि किसान को अवेयर करना कि जो भी है वो अधिक से अधिक खाद दे रहे हैं खेत में, और उसका भी देखा जा रहा है कि असंतुलित मात्रा में दे रहे हैं जिसका बैलेंस नहीं है। जैसे खेत में हमें जिंक सल्फेट की जरूरत है लेकिन किसान DAP दे रहा है, ये चीजें किसान को कैसे पता लगे? किसान जब तक अपने खेत के मिट्टी की जांच न कराए, तो किसान जो भी उर्वरक प्रबंधन करे अपने खेत की मिट्टी की जांच करा करके ही वैज्ञानिक विधि से वैज्ञानिकों से सलाह लेकर के ही उसमें संतुलित उर्वरकों का प्रबंधन करे, जिससे कि किसान भाई अगर संतुलित उर्वरकों का बैलेंस रूप में करते हैं तो उनको अधिक से अधिक लाभ निश्चित ही मिलता है।
1: जी बिल्कुल, उससे आपकी लागत में भी कमी आएगी और उत्पादन भी आपका अच्छा होगा और जो आपकी मृदा है उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: जी
1: डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, आप कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आप

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: खेत बचाओ अभियान के तहत संतुलित खाद, मृदा स्वास्थ्य जांच व वैज्ञानिक खेती द्वारा अधिक उत्पादन। डॉक्टर ब्रिजेश यादव वैज्ञानिक भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से जानकारी दे रहे थे और इनसे बातचीत कर रहे थे शिव नंदन लाल।
2: और सरिता बहन, देखिए विज्ञान की तरक्की के साथ साथ खेती में काफ़ी परिवर्तन आए, साथ ही आए नए नए कृषि यंत्र व खेती के आधुनिक तकनीकें, लेकिन साथ साथ ही देखिए यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग द्वारा हमारे किसान भाइयों की जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में भी कमी आ रही है और साथ ही उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज FICCI फेडरेशन हाउस नई दिल्ली में भारत अभिनव फसल पोषण सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जानकारी देते हुए प्रोफेसर एस महेंद्र देव अध्यक्ष प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने बताया।
3: Lino, still we don't know the there is deficiency in this month, but we have to see July August rains, and then and government has contingency plans for each district. We have plans and also crop diversification and other things. So that way, I think we are prepared for that Lino impact. We have, we need 7-8% growth for Viksit Bharat, and we need investment for that. So private sector investment is equally important, and also export growth important. So the Prime Minister has mentioned about Atmanirbhar Bharat. That is equally important. We have done many reforms, over the years, and that will continue in the next years to come. So the Atmanirbhar Bharat doesn't mean import substitution, but we are basically saying that the Prime Minister, the competition should increase and the quality of the products so that we can export more. So, and also we have demographic advantage and technology improvement, skills. So all these things will lead to Viksit Bharat by 2047.
1: इसी सम्मेलन में जानकारी देते हुए डॉ पीके सिंह, कृषि आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने बताया।
4: जहां तैयारी की बात है तो उसमें यह है कि IMD से जैसे जैसे सूचना आ रही उसके आधार पे कंटीजेंसी प्लान, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंटीजेंसी प्लान्स बन गए हैं सबके। आज सबको सेंसिटाइज भी कर दिया गया है, सभी स्टेट्स को, और उसके आधार पे आगे अब जहां जहां जैसे बरसात की स्थिति होगी वैसे वो कंटीजेंसी प्लान लागू होंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। ये 2015 में जो अल नीनो आया था ऑलमोस्ट वैसा ही कंडीशन है, तो तब से हमारे इरिगेशन की सुविधाएं बहुत बढ़ी हुई हैं देश में 10 साल में पिछले, तो राइस वीट के तो भंडार बहुत अच्छा है, पल्सेस में भी चना इस बार बहुत अच्छी फसल थी उसका भी भंडार बहुत अच्छा है, और बाकी जहां कमी होती है कहीं इम्पोर्ट करने की जरूरत होगी तो इम्पोर्ट किया जाएगा। तोर में पहले भी इम्पोर्ट होता रहा है, इस बार भी अगर जरूरत पड़ेगी तो होगा, और अच्छा ये है कि अगर सूखा की स्थिति थोड़ा सा मानसून डिले होता है तो पल्सेस की ओर शिफ्ट होता है किसान, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन कम पानी में होने वाली फसल है, तो श्री अन्ना है, पल्सेस है, इसका एरिया अभी वो थोड़ा बढ़ा हुआ भी दिख रहा है पिछले साल की तुलना में, इस साल इनका एरिया अभी तक बढ़ा हुआ है, तो खासतौर से मूंग का जैसे राजस्थान में काफ़ी एरिया बढ़ा हुआ है, ऑयल सीड में भी कुछ एरिया बढ़ा है, तो लेट अस सी। अभी तो अब सेकेंड अनुमान अब इनका 27-28 तारीख तक आएगा जुलाई के रेनफॉल का, अभी तो ठीक है, अभी 40% कमी है बारिश की पूरे देश के हिसाब से देखें, बट लेट अस सी क्या होता है। हम लोग जो खेत बचाओ अभियान कर रहे हैं उसका बेसिक एम यही है कि आप जो है इस समय इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ओर बढ़ें किसान, और साथ में आप अगर ये देखें कि जहां एक्सेस डाइवर्जन हो रहा था फर्टिलाइजर्स का उसको रोकने की कोशिश हो रही है कि वो किसान भी उसमें आगे आए, जितना जरूरत है सॉयल हेल्थ कार्ड सबके पास है उसके आधार पर फर्टिलाइजर का प्रयोग करें तो कमी नहीं है। अगर आप सीरियल से पल्सेस की ओर शिफ्ट करते हैं अपने आप फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन कम होता है, कहीं अगर 125 केजी नाइट्रोजन की जरूरत होती है मक्के में तो 12.5 किलो केवल चाहिए तूर में, या 25 केजी चाहिए सोयाबीन में, तो इन दैट वे अगर डाइवर्सन होता है उस तो कोशिश ये है कि श्री अन्ना की ओर, पल्सेस की ओर, हमारे जो मिशन चल रहे हैं तीन, दलहन मिशन है, तिलहन मिशन है, और फिर आपका कॉटन मिशन भी शुरू हो गया है, तो कोशिश है कि इनकी ओर डाइवर्ट करें किसान, और जो हैवी न्यूट्रिएंट लेने वाले हैं जैसे राइस है उसमें पानी भी ज़्यादा चाहिए, न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा चाहिए, तो उधर से डाइवर्जन हो इन फसलों की ओर। तो लोकेशन स्पेसिफिक हम लोग बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें भी ब्लॉक लेवल पे कहाँ पानी की क्या सुविधा है उसके हिसाब से फसल का चयन होता है। तो जो कृषि धन धान्य योजना है उसमें 100 जिले जो थोड़ा पिछड़े रह गए हैं प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से या क्रेडिट या अन्य चीज़ों के हिसाब से, तो उनको आगे बढ़ाने

0: की भी कोशिश चल रही है, तो उन सभी के लिए काम किया जा रहा है कहाँ पे क्या हो।
1: सीता बहन, ये तो जानकारी रही। और देखिए इस समय भाई, देखिए अगर मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में जो तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहने की उम्मीद है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और देखिए भाई, खेती में अगर बात करें तो भाई मौसम का काफी रोल होता है। सही, बिल्कुल। और इस समय देखिए खरीफ फसलों की तैयारी का मुख्य समय है। बारिश को देखकर आप जल्दबाजी ना करें बुआई। खेत की नमी और अगले 5 दिन का पूर्व अनुमान लेकर ही आप काम करें। मानसून की प्रतीक्षा करें। और भाई उत्तर भारत और मध्य भारत की बात करें तो मानसून की प्रक्रिया चल रही है। मिट्टी में पर्याप्त नमी, कम से कम 4 से 6 इंच होने पर बुआई करें। दूसरा, बीज अगर जहां से भी आप लें तो उपचारित बीज लें। अगर बीज उपचारित ना हो तो उपचारित अवश्य कर लें।
2: जी हाँ, और पहली, क्योंकि अभी भाई जून का अंतिम समय पड़ाव पे हैं हम, और पहली बारिश के बाद जल भराव न होने दें, क्योंकि देखा जाता है कि जून के अंत में अचानक तेज बारिश हो सकती है। यदि खेत में पानी लंबे समय तक खड़ा रहे तो जड़ें सड़ सकती है, पौधों को ऑक्सीजन कम मिल सकता है, रोग और कीट बढ़ सकते हैं, अंकुरण जो है वो खराब हो सकता है। तो बचाव करने के लिए बहुत जरूरी है कि खेत के चारों तरफ छोटी नालियां बनाए, खेत को समतलीकरण करें, पानी निकासी की आप उचित व्यवस्था रखें और संतुलित खाद का प्रयोग करें, तो फसल की अच्छी वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा।
1: और भाई देखिए, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भी जो फसल का आप चुनाव करें तो अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह के अनुसार कम अवधि वाले उन्नत किस्मों का ही चयन करें। और साथ ही भाई देखिए, फसलों की पैदावार गुणवत्ता मौसम के तापमान, नमी और बारिश पर, जैसे कि हमने बताया, काफी निर्भर करती है। जलवायु के अनुसार खेती करने से पानी और उर्वरक दोनों की बचत होती है। और साथ ही देखिए भाई, इस मौसम में जो खरपतवार नियंत्रण भी काफी हो जाते हैं, तो भाई आपने खरपतवार नियंत्रण का भी पूरा ध्यान रखना है।
2: जी हाँ, इन बातों का अगर पालन आप करेंगे तो जून के अंत में जो बोई गई खरीफ फसलें ना, जैसे धान, बाजरा, मक्का, मूंग और अरहर, ये बहुत अच्छे उत्पादन आपको दे सकते हैं।
1: और देखिए सरिता बहन, अब बारी है कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल 5:10 पर लोक रंजनी कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे। वहीं 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में चर्चा करेंगे कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। और साथ ही भाई योजना की अगर बात करें तो योजना की जानकारी देंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में कृषि समाचार दर्शन होगा। साथ ही योजना की बात करें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जानकारी देंगे, और हरियाणा की चुनिंदा मंडियों के बजाऊ पार्क के बारे में जानकारी देंगे। और भाई ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा, अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया में अवश्य भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, द्वारा निर्देशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी दिल्ली।
2: जी हाँ, और आप हमें मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं अपने सुझाव। हमारा मेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं गजलों एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफी एवं साथी की आवाज में ये कव्वाली।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: आप सुन रहे थे गजलों एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया। पहली जनवरी 2025 तक की बस्तियां होंगी शामिल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने स्टॉप डायरिया अभियान 2026 का शुभारंभ किया। महापौर

0: वाही ने आगामी मॉनसून की तैयारियों के लिए अंतर विभागीय समीक्षा बैठक की। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल तक तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट कर दिया है जारी, और दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण 31 जुलाई से होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। एक रिपोर्ट।
1: ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 जनवरी 2025 तक मौजूद सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 36वीं बैठक में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि ये निर्णय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंतिम रूप दी गई दिल्ली झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति 2026 के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि पहले पुनर्वास के लिए वर्ष 2015 को आधार वर्ष माना जाता था, जिसकी सीमा अब बढ़ा दी गई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से लाखों परिवारों को आधुनिक आवास उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। इन आवासों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, खेल मैदान और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इससे परिवारों को सम्मानजनक, सुरक्षित और बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन और पक्का आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली सरकार ने राजधानी के पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना से दिल्ली के लगभग 2.70 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों सहित करीब 10 लाख लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से गरीब, श्रमिक और वंचित परिवारों के कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बात की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। समग्र सरकारी दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए विभागों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने पिछले एक दशक में शासन में आए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रशासन प्रक्रिया केंद्रित मॉडल से परिणाम उन्मुख हुआ है। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं अमीशा।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला

0: एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन दृष्टि ईआरपी और नाफेड कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: गृह मंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी है।
2: नेफेड ने एनसीसीएफ के साथ मिलकर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे पारदर्शी तरीके से खरीद हो किसान की, और न केवल खरीद हो बल्कि निश्चित समय सीमा में 48 घंटा तय किया है, किसान के खाते में पैसा भी पहुंच जाए, खरीदी में लाइन ना लगे तो पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाए, पंजीकरण, निर्धारित तिथि पर बुलाना, वहां बैठने की पीने के पानी की न्यूनतम जो सुविधाएं वो देना, ये सचमुच में नेफेड ने किसानों के हित में बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं उनकी पूरी टीम को आज हृदय से बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज आगामी मानसून सीजन की तैयारियों के लिए एक उच्च स्तरीय अंतरविभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय को और सुदृढ़ बनाना था, साथ ही मानसून के दौरान नागरिकों को होने वाली असुविधाओं को न्यूनतम करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना था। इस दौरान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित जल भराव से संबंधित अंतर विभागीय मुद्दों और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे नालों की गाद निकासी कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि मानसून के दौरान प्रभावी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकासी पंप, मोटर, डीवॉटरिंग उपकरण तथा अन्य आपातकालीन मशीनरी समेत सभी आवश्यक संसाधनों को पूरी तरह तैयार और कार्यशील अवस्था में रखा जाए। दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में स्टॉप डायरिया अभियान 2026 की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों और उनके अभिभावकों को ओआरएस के पैकेट और जिंक की गोलियां भी निशुल्क वितरित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को डायरिया से होने वाली बीमारियों और मौतों से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह अभियान आगामी 31 जुलाई तक पूरे राजधानी में चलाया जाएगा। स्टॉप डायरिया अभियान के साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में नव निर्मित मॉडल इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सेंटर का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। यह केंद्र बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया।

0: गया है। इसमें एलोपैथी, आयुष, होम्योपैथी, यूनानी और योग जैसे विभिन्न चिकित्सा पद्धति को एकीकृत किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने गर्भकालीन मधुमेह और गर्भावस्था तथा प्रसवोत्तर सेप्सिस के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की तथा क्लिनिकल एल्गोरिदम का विमोचन भी किया। नए क्लिनिक एल्गोरिदम स्वास्थ्य संस्थानों में त्वरित संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किए जा सकेंगे और डॉक्टरों, नर्सों तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को गर्भावस्था के दौरान मधुमेह, संक्रमण और सेप्सिस जैसे उच्च जोखिम वाली स्थितियों की समय पर पहचान और प्रबंधन में सहायता करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु देखभाल, टीकाकरण, पोषण, समय पर उपचार और सामुदायिक जागरूकता पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज नवजीवन विहार स्थित रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकेंद्रीकृत खाद निर्माण इकाइयों, स्रोत स्तर पर कचरा पृथककरण व्यवस्था और स्थानीय वर्षा जल संचयन प्रणाली का भी जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि यह क्षेत्र राजधानी में जीरो वेस्ट कॉलोनी के एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में स्थापित है। उन्होंने कहा कि समुदाय के नेतृत्व में हुआ यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ और वेस्ट टू वेल्थ पहल के अंतर्गत सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को दर्शाता है। उपराज्यपाल ने RWA और स्थानीय निवासियों के प्रयासों की भी सराहना की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्थित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ पार्क में पौधारोपण भी किया। अपने संबोधन में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि डॉ मुखर्जी का जीवन राष्ट्र की एकता, उसकी अखंडता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित था। दिल्ली में दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन 31 जुलाई से 30 अगस्त तक खेला जाएगा। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि नए सीजन से पहले खिलाड़ियों की नीलामी 1 जुलाई को होगी। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल तक तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर बाद धूल भरी आंधियों के साथ तेज बारिश हुई, जिससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया है कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 39-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया। पहली जनवरी 2025 तक की बस्तियां होंगी शामिल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने स्टॉप डायरिया अभियान 2026 का शुभारंभ किया। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल तक तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण 31 जुलाई से होगा शुरू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हुआ समाप्त। नमस्कार।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी युवा साथी अमीषा पटेल।
2: नमस्कार।
1: और अमीषा, आज सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। यह दिन फिटनेस, समावेशिता और उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान के मूल ओलंपिक मूल्यों को

0: इफेक्ट तो बनाता है, क्योंकि जब भी कोई फिटनेस की शुरुआत करते हैं या कोई एक्सरसाइज, योगा, किसी भी तरह की कोई शारीरिक श्रम की जब बात होती है तो पहले एक दो दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब शुरुआत करते हैं तो उसके बाद शरीर में दर्द भी होते हैं, कई बार हमारा फोकस, हमारी जो मन की दशा होती है वो ऐसी हो जाती है कि मन करता है कि छोड़ देते हैं, क्या जरूरत है फिटनेस करने की। लेकिन उसी को सामने रखते हुए आत्मसंदेह पर काबू पाना ओलंपिक दिवस का मोटो है।
1: जी बिल्कुल, और ओलंपिक दिवस हमें यह भी सिखाता है कि खेल केवल पदक जीतने या रिकॉर्ड बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, मित्रता और सम्मान जैसे मूल्यों का विकसित अपने अंदर विकसित करने का भी यह एक जरिया है।
0: और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ओलंपिक का एक मूल उद्देश्य भी रहा है। और ओलंपिक दिवस के बाद अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, और खास रिपोर्ट बनाई है हमारी युवा साथी अमीषा पटेल ने।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। कल कई बड़े मुकाबले खेले गए जहां रिकॉर्ड्स बने, टीम्स ने नॉकआउट की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए और फैंस को कई यादगार पल देखने को मिले। वहीं आज कुछ और अहम मुकाबले होने वाले हैं जो अगले दौर की तस्वीर और साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के मुकाबलों की, जहां स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। ग्रुप जे के मुकाबले में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के हीरो रहे लियोनेल मेसी, जिन्होंने मैच में दोनों गोल किए। अड़तीसवें मिनट में किए गए उनका पहला गोल वर्ल्ड कप इतिहास में एक नया रिकॉर्ड लेकर आया, जिसके साथ मेसी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद दूसरा गोल करते हुए उन्होंने अपने वर्ल्ड कप गोल्स की संख्या 18 तक पहुंचा दी। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के लिए अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। अगर ग्रुप जे की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो अर्जेंटीना 2 मैचों में 2 जीत के साथ 6 पॉइंट्स लेकर टॉप पर बनी हुई है। वहीं ऑस्ट्रिया 1 जीत और 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में फ्रांस ने एक और धमाकेदार जीत दर्ज की। ग्रुप आई में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। मैच के दौरान खराब मौसम के कारण खेल को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, लेकिन इसका फ्रांस की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा। काइलियान एम्बापे ने 2 गोल किए, जबकि ओस्मान देमबेले ने 1 गोल जोड़कर फ्रांस की जीत पक्की कर दी। इस नतीजे के साथ फ्रांस ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है। उधर ग्रुप आई के दूसरे मुकाबले में अर्लिंग हालैंड का जलवा एक बार फिर देखने को मिला, जहां नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से मात दी। हालैंड ने 2 गोल करके अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये नॉर्वे की लगातार दूसरी जीत रही है और इसी के साथ टीम ने भी राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगर ग्रुप आई की स्टैंडिंग्स की बात करें तो फ्रांस और नॉर्वे दोनों ने अपने अपने 2 मैच जीतकर 6-6 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और दोनों ही अगले राउंड में पहुंच चुकी हैं। बेहतर गोल मार्जिन की वजह से फ्रांस पहले स्थान पर है, जबकि नॉर्वे दूसरे नंबर पर बना हुआ है। वहीं सेनेगल और इराक अपने दोनों मुकाबले हार कर भी अब पॉइंट्स टेबल में पीछे हैं। वहीं दिन के आखिरी मुकाबले में अल्जीरिया ने शानदार वापसी दिखाई। ग्रुप जे के मैच में अल्जीरिया ने जॉर्डन को 2-1 से हरा दिया। जॉर्डन ने शुरुआत में बढ़त जरूर बनाई, लेकिन अल्जीरिया ने जबरदस्त कमबैक करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ जॉर्डन टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, जबकि अल्जीरिया की नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। अगर ग्रुप जे की स्थिति की बात करें तो अल्जीरिया ने 1 जीत के साथ 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं और क्वालिफिकेशन की उम्मीदें अभी भी बनी हुई है। दूसरी तरफ जॉर्डन बिना किसी पॉइंट के टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है।

भर के फुटबॉल फैंस की नजर रहेगी। पहला मुकाबला पुर्तगाल वर्सेस उज़्बेकिस्तान का होगा। यह महत्वपूर्ण मुकाबला टेक्सास के हस्टन स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों ही टीम्स के लिए यह मैच टूर्नामेंट के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि दोनों ही अपनी पहली जीत की तलाश में हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कप्तानी वाली पुर्तगाल को अपने पहले मैच में डीआर कांगो के खिलाफ 1-1 की बराबरी पर रुकना पड़ा था, जहां जोआओ नेवेस के शुरुआती गोल के बाद युआने वीसा ने स्कोर लेवल कर दिया था। इस निराशाजनक ड्रॉ के बाद रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम पर इस मैच में पूरे 3 पॉइंट्स लेने का काफी दबाव है। वहीं दूसरी तरफ पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही फाबियो कानावारो की उज़्बेकिस्तान टीम को अपने पहले मैच में कोलंबिया के हाथों 3-1 से हार का सामना करना पड़ा था, जहां अब उज़्बेक ने अपनी टीम के लिए इतिहास का पहला वर्ल्ड कप गोल दागा था। उज़्बेकिस्तान के लिए ये डू और डाई की स्थिति है, क्योंकि एक और हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ा कर देगी। इतिहास में पहली बार दोनों देशों की फुटबॉल टीम्स एक दूसरे के खिलाफ कोई ऑफिशियल मैच खेलने जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप एल का सबसे बड़ा और ब्लॉकबस्टर मुकाबला इंग्लैंड और घाना के बीच बोस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। थॉमस टुचेल के मार्गदर्शन में खेल रही इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 से एक शानदार जीत दर्ज की थी, जिसमें कप्तान हैरी केन ने 2 गोल दागे थे। वहीं दूसरी तरफ घाना ने भी अपने पहले मुकाबले में पनामा को 1-0 से हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए हैं, जहां क्लैब हिरनकी ने 95 मिनट में हिस्टोरिक मैच विनिंग गोल दागा था। इस मैच में विजेता रहने वाली टीम के पास 6 अंक हो जाएंगे, जो उन्हें ऑफिशियल तौर पर अगले नॉकआउट राउंड यानी राउंड ऑफ 32 के बिल्कुल करीब पहुंचा देगा। इतिहास में पहली बार ये दोनों टीम किसी वर्ल्ड कप के कॉम्पिटिटिव मैच में एक दूसरे से टकराएंगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दें आपको कि अगर जूड बेलिंगम इस मैच में खेलते हैं तो वो महज 22 साल की उम्र में इंग्लैंड के लिए 50 कैप्स पूरे करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। वहीं बात करें पनामा और क्रोएशिया की, तो ग्रुप एल का ये एक बेहद थ्रिलिंग और डू ऑर डाई मुकाबला पनामा और क्रोएशिया के बीच कनाडा के टोरंटो स्टेडियम में खेला जाएगा। ल्यूका मॉड्रिक की कप्तानी वाली क्रोएशिया को अपने पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों 4-2 से निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उन्हें हर हाल में ये मैच जीतना होगा। वहीं दूसरी तरफ पनामा को भी अपने पहले मुकाबले में घाना से 95 मिनट में 1-0 से बेहद करीबी हार मिली थी। दोनों ही टीम्स के पास अभी तक 0 अंक हैं, जिसके चलते ये मुकाबला दोनों के लिए टूर्नामेंट में बने रहने का आखिरी मौका बन गया है। फुटबॉल इतिहास में दोनों देशों के बीच ये पहला ऑफिशियल फेस ऑफ होगा, और पनामा जो अब तक वर्ल्ड कप इतिहास में यूरोपियन टीम्स के खिलाफ अपना सभी मैचेस हारी है, वो इस रिकॉर्ड को जरूर बदलना चाहेंगे। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक और हाई वोल्टेज मुकाबले की, जो कि ग्रुप के की टीम्स कंबोडिया और डीआर कांगो के बीच मेक्सिको में खेला जाएगा। नेस्टर लोरेंजो के मार्गदर्शन में खेल रही कोलंबिया ने अपने पहले मुकाबले में उज़्बेकिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी थी, जिसमें स्टार फॉरवर्ड लुइस डियाज ने बेहतरीन गोल दागा था। वहीं दूसरी तरफ डीआर कांगो ने अपने पहले मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मजबूत पुर्तगाल टीम को 1-1 की बराबरी पर रोककर सबको हैरान कर दिया था, जहां युआने वीसा ने हाफ टाइम से ठीक पहले गोल दागकर अपनी टीम को एक कीमती पॉइंट दिलवाया था। और अगर आज डीआर कांगो इस मैच में कोई बड़ा उलटफेर करती है या मैच ड्रॉ खेलती है, तो ग्रुप के की तस्वीर बेहद पेचीदा और रोमांचक हो जाएगी। दोनों देशों के बीच फुटबॉल इतिहास में ये पहला ऑफिशियल कॉम्पिटिटिव मैच होने जा रहा है। तो श्रोताओं, कल का दिन लियोनेल मेसी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के नाम रहा, और आज सबकी नजरें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हैरी केन, लुका मॉड्रिच और लुइस डियाज जैसे सितारों पर होंगी। कौन सी टीम नॉकआउट राउंड के और करीब पहुंच पाएगी, इसका जवाब मिलेगा आज के इन रोमांचक मुकाबलों में।

अमीषा की खास फीफा वर्ल्ड कप रिपोर्ट के बाद अब बात कर लेते हैं महिला विश्व कप T20 की, जहां पर आज मुकाबला, इस समय जो मुकाबला चल रहा है वो श्रीलंका और आयरलैंड की टीमों के बीच चल रहा है, और श्रीलंका की टीम, आयरलैंड की टीम अभी तक 16 ओवर में 100 रन बना चुकी है 4 विकेट्स के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं एक चीज यहां पर है कि

0: उनका कि गेंदबाजी इस समय बहुत अच्छी हो रही है और आयरलैंड की टीम के पास कोई भी मौका नहीं है श्रीलंका की इस गेंदबाजी के खिलाफ बड़े स्कोर बनाने का, और इसलिए काफी धीमी गति से रन बन रहे हैं। और इससे पहले जो आज मुकाबला खेला गया वो था स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच ये मुकाबला खेला गया। पहले खेलते हुए स्कॉटलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने 131 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर्स में। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए 132 रन बना दिए 4 विकेट के नुकसान पर केवल 18.2 ओवर्स में। तो ये दर्शाता है कि न्यूजीलैंड की टीम दोबारा से लय में वापस आ रही है। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा वो लय से जरूर भटक गए थे लेकिन दोबारा से अब वो अपनी लय को वापस पा रहे हैं। वहीं आज जो अगला मुकाबला होना है वो है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच, और पाकिस्तान की टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ बहुत अधिक मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी स्ट्रांग टीम मानी जाती है। सभी जो डिपार्टमेंट हैं क्रिकेट के, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो और फील्डिंग हो, तीनों में ही ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही सशक्त माने जाते हैं। और पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है आज का ये मुकाबला क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है। वहीं अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की तो इस समय जो पॉइंट्स टेबल है उसमें ग्रुप वन में जो सबसे ऊपर टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है। उन्होंने 3 मैच जीते हैं, 3 मैच खेले हैं और तीनों ही जीते हैं, 6 अंक हैं। भारतीय टीम दूसरे पायदान पर है, 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारा, 4 अंक हैं। तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है, 3 मैच 2 जीते 1 हार के बाद उनके भी 4 अंक हैं, और बांग्लादेश के भी 3 मैचों के बाद 2 जीत और 1 हार के बाद 4 अंक हैं। और वहीं पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीम अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई हैं, 3 मैच खेले और तीनों ही दोनों टीमें हार चुकी हैं। वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड की टीम सबसे ऊपर बनी हुई है, 3 मैच खेले, 3 ही जीते, 6 अंक उनके पास हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम के पास भी 6 अंक हैं 3 मैचों के बाद। न्यूजीलैंड की टीम के पास 4 मैचों के बाद 2 हार और 2 जीत के साथ कुल 4 अंक हैं। वहीं स्कॉटलैंड के पास 4 मैचों में 1 जीत और 3 हार के साथ 2 अंक हैं। श्रीलंका की टीम के पास भी 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ 2 अंक हैं, और आयरलैंड की टीम का अभी तक खाता नहीं खुला है। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि इस समय जो वर्ल्ड कप है वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, और 17 ओवर्स के बाद 104 रन बना लिए हैं आयरलैंड की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ। और वहीं अब क्रिकेट की बातों को देते हैं विराम और अब बात कर लेते हैं हॉकी की। और हॉकी में प्रो लीग के मुकाबले में इस समय भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं, और जो तीसरे क्वार्टर का खेल इस समय चल रहा है, और पहले क्वार्टर में जिस तरह से खेल हुआ तो शुरुआत में बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान ने अटैक्स किए और नदीम अहमद ने 7वें मिनट में, यानी कि 7.5 मिनट के आसपास, 7:26 के आसपास उन्होंने गोल किया और 1-0 से पाकिस्तान की टीम आगे हो गई थी पहले क्वार्टर में। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम लय में आई और 23वें मिनट में नीलकंता शर्मा ने गोल किया, और उससे पहले 21वें मिनट में गोल किया अभिषेक ने। तो कुल मिलाकर 2-1 से इस समय भारतीय टीम आगे है। और इससे पहले महिलाओं की प्रो लीग में अर्जेंटीना और स्पेन का मुकाबला स्पेन ने 2-1 से जीता। तो अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि प्रो लीग में इस समय भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं, तीसरा क्वार्टर इस समय चल रहा है, 2-1 से भारतीय टीम ने बढ़त बनाई हुई है। और अमीशा सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि अभी तक भारतीय टीम ने जो अटैक किए हैं वो बहुत अधिक हैं, पेनल्टी कॉर्नर्स भी भारतीय टीम को अधिक मिले हैं। पाकिस्तान को केवल अभी तक 2 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले हैं जबकि भारतीय टीम को अभी तक 7-8 पेनल्टी कॉर्नर मिल चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि बहुत तेजी के साथ भारतीय टीम ने अपना शिकंजा कसा हुआ है और जो अटैक्स हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के गोलकीपर ने आज बहुत अच्छी गोलकीपिंग की है, और बहुत सारे अटैक्स, कम से कम 5 अटैक ऐसे थे जो भारतीय गोल हो सकते थे लेकिन पाकिस्तानी गोलकीपर ने उनको नाकाम किया, और इस समय 2-1 से भारतीय टीम आगे चल रही है। और वहीं अब हॉकी के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली में खेली जा रही एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप की, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट सुनते हैं।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों की पदक की तलाश जारी रही। पहले 4 दिनों में फॉयल, सेबर और एपी के मुकाबलों में कई भारतीय खिलाड़ियों ने कोरिया, जापान, चीन, कजाकिस्तान

0: और हांगकांग के तलवारबाजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन पोडियम फिनिश नहीं कर सके। पांचवें दिन आज सेबर महिला टीम और पुरुष एपी टीम के मुकाबले हुए। राउंड ऑफ 16 में भारतीय टीम का मुकाबला थाईलैंड से हुआ, जहां भारतीय महिला टीम नजदीकी कड़े मुकाबले में 44-45 यानी एक अंक के अंतर से पराजित हो गई। भारतीय तलवारबाज जेफरलिन ने टच स्कोर से 5 अंक बनाए। थाईलैंड की पोकोयू टोंगा 3 अंक ही ले सकी। उसके बाद स्टार तलवारबाज सीए भवानी देवी ने 5 अंक बटोरे। भारत का स्कोर 15 हो गया। थाईलैंड की सोमपाहो 3 अंक ही ले सकी। जेफरलिन ने फिर 5 अंक लिए और श्रेया के 5 और अंकों के साथ भारतीय टीम एक समय 35-25 से आगे चल रही थी। उसके बाद थाईलैंड की सोमपाओ ने जेफरलिन के खिलाफ अंक बटोरे और थाईलैंड 40-39 से आगे हो गया। उसके बाद भवानी देवी और थाई खिलाड़ी पोकोयो दोनों ने 5-5 अंक लिए और थाईलैंड एक अंक से जीतने में सफल रहा। थाईलैंड की टीम अंतिम 8 में कोरिया से हार गई। अब फाइनल में कोरिया की टक्कर उज्बेकिस्तान से होगी, जिसने अन्य सेमीफाइनल में कजाकिस्तान को हराया। भारतीय महिला तलवारबाज श्रेया ने टीम के प्रदर्शन पर क्या कहा, आइए जानते हैं।
1: हाय एवरीवन, मैं श्रेया गुप्ता हूँ और मैं सेबर इवेंट खेलती हूँ। तो इंडिविजुअल में मेरा 23rd रैंक था। मैं पूल में 3 बाउट जीती थी और फिर मैं राउंड ऑफ 32 में, जो एक उज्बेकिस्तान की फेंसर है जिसका ब्रॉन्ज मेडल आया, मैं उससे हारी। तो मतलब मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि हम एशिया के जो बेस्ट फेंसर्स हैं उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिलता है और जहाँ पे हम पीछे हैं वो हम एनालाइज करके और आगे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और आज हमारा टीम इवेंट था, हम 44-45 से थाईलैंड से हारे, तो एक पॉइंट का डिफरेंस था, तो ऑब्वियसली अभी बहुत बुरा लग रहा है। बट उसके बाद हमारा रैंकिंग बाउट था फिलीपींस के साथ, उसमें हम जीते तो हम 9th रैंक पे आए ओवरऑल एशिया में।
0: एशिया के अच्छी कंट्रीज यहाँ आई हुई हैं और उनसे काफ़ी जैसे कहा जाता है कि खेल में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है, आपने क्या सीखा?
1: तो पहली बार इंडिया में एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप हो रही है, तो पहले तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो इंडियन ऑडियंस है उनको फेंसिंग के बारे में पता चलेगा। और आपने सही कहा, हमने बहुत कुछ सीखा, मतलब जैसे जो सेबर में मैंने सीखा कि कैसे हम टाइमिंग कंट्रोल और डिस्टेंस कंट्रोल कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और जो मेरे कोचेस थे उन्होंने भी मेरे को बताया कि कहाँ तुमने गलत किया, और उन्होंने यही बोला कि हम इम्प्रूव करेंगे और आगे मैं यही चाहती हूँ कि मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूँ, जहाँ पे आई एम लैकिंग आई इम्प्रूव दैट और मैं आगे और भी अच्छा रिजल्ट लाऊँ।
0: टीम में भवानी भी हैं, भवानी सिंह सी ए भवानी सिंह, जो कि ओलंपियन हैं, एशियन चैंपियनशिप में मेडल भी है, तो एक अच्छे एक कंपटीशन अच्छा मिला अपोनेंट से। इसके अलावा जो टीम में साथी हैं सीनियर, उनसे भी काफ़ी एक शेयर करने से, साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने से भी काफ़ी कुछ सीखता है।
1: सही बोल रहा है, जैसे भवानी देवी है वो जो द ओनली ओलंपियन इन फेंसिंग फ्रॉम इंडिया, तो जैसे हम टीम में उनके साथ खेलते हैं तो काफ़ी कुछ बताते हैं, जैसे हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी मैच से पहले भी वो बताते हैं कि तुम्हें प्रेशर नहीं लेना है, तुम्हें बस पॉइंट के लिए नहीं खेलना बट तुम्हें इंजॉय करके खेलना है, और जब मैच होता है वो तब भी मोटिवेट करते हैं कि तुम अपने एग्रेशन से खेलो और ये मत सोचो कि आगे कौन खेल रहा है, तुम अपना बस बेस्ट दो।
0: तो अभी आगे एशियन गेम्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, तो तैयारियों को कैसे स्वरूप रहेगा? आपने कहा ना कि आप और बेहतर तैयारी करेंगे,
1: तो अभी जैसा हमारा क्या पता कैंप लगे, अभी तो कुछ आया नहीं, तो एज इन कैंप लगेगा तो कोचेस हमें और सिखाएंगे जहां हम लैक कर रहे हैं और हम अपना और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: हमने भारत की स्टार तलवारबाज सी ए भवानी देवी से भी बात की और जानना चाहा कि यहाँ कि जो प्रदर्शन से वो कितना सेटिस्फाई हैं और आगे जो योजनाएं हैं, आगे वाले कंपटीशन है, क्या तैयारियां चल रही हैं, इन तमाम सवालों के जवाब में उन्होंने कहा। अभी जैसे आपने कई कंपटीशन किया और टोक्यो ओलंपिक में भी आप खेली हैं, अभी लॉस एंजलिस के लिए क्या रोड मैप है और कैसी तैयारियों का एक स्वरूप रहेगा?
2: लॉस एंजलिस नेक्स्ट ओलंपिक्स, ये भी मेरे को एक नया एक्सपीरियंस है क्योंकि एक बार मैंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया, सेकेंड टाइम नहीं किया, तो अभी और नो जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी लर्निंग्स है, वो सब कुछ मुझे ठीक तरह से करके लॉस एंजल्स में जाना पड़ेगा क्योंकि फेंसिंग जो एक स्पोर्ट है, अगर मैं कल अच्छा खेला तो ऐसा नहीं है कि मैं आज भी अच्छा करूँगी, क्योंकि सेबर स्पोर्ट में हर मिनट हमारा मोमेंट, हमारा स्ट्रेस, हमारा वो रिदम सब कुछ चेंज होते रहता, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, अगेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट दिस टाइम आई एम विद अ टीम, यू नो मेरे साथ बहुत लोग है, लास्ट टाइम मैंने अकेले थी, बट इस बार आई हैव मेनी पीपल टू सपोर्ट मी, टू एनकरेज मी, टू मोटिवेट मी, एंड द सेम टाइम

0: मुझे भी पता है कैसे करना है कैसे करना है. सो नाउ आई होप दैट कि मैं सारी मिस्टेक्स कम करूं और अच्छा से मेरी एक्सपीरियंस को, मेरी लर्निंग्स को, मेरी स्ट्रैटेजीज को अच्छा से यूज़ करके मैं पहले क्वालिफाई हो जाऊं. एंड वी आर वर्किंग रियली हार्ड, आई एम वर्किंग रियली हार्ड, माई कोच एंड माई सेल्फ, वी हैव अ टीम, माई सपोर्ट सिस्टम, वी आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर दैट गोल. आई रियली होप दैट आई फैंस इन लॉस एंजलस एंड अगेन इंडियंस विल वॉच माई गेम इन लॉस एंजलस लाइव.
1: इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, एशियन चैंपियन भी है, एशियन गेम्स भी हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ थोड़ा सा एक और रिदम आएगी?
0: अभी एशियन गेम्स का पता नहीं है क्योंकि वी डोंट नो इफ वी हैव क्वालिफाइड और नॉट, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप है. सो यस, वी विल डू आवर बेस्ट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन. एंड मेरे लिए एक्चुअली मैंने सर्जरी की थी अभी नवंबर में, सो सर्जरी के बाद मेरा फर्स्ट बिग टूर्नामेंट ये है और सेकेंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप. सो आई रियली वॉन्ट टू डू माई बेस्ट परफॉर्मेंस देयर.
1: फेंसिंग में जो भी आता है वो उनके लिए भवानी देवी जो है एक रोल मॉडल है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह तैयारी की?
0: मैं आई विल से दैट कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि हार्ड वर्क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन वो उस हार्ड वर्क के साथ आपका अच्छा माइंडसेट भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन 5 घंटा ट्रेनिंग कर रही हूँ इसकी वजह से लिए मैं क्वालिफाई या कुछ मेरा रिजल्ट अचीव कर पाऊँगी, लेकिन वो 5 घंटे आप कैसे माइंडसेट से ट्रेनिंग कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कीप द माइंडसेट स्ट्रांग एंड बी पॉजिटिव. जो भी है आपका 100% देना है और हार्ड वर्क कभी नहीं छोड़ना है और यू नीड टू एन्जॉय एवरीथिंग, ट्राई टू लर्न from every experience you face in your life, in the sport or even in the general life. And बस enjoy करो life को and just keep working hard.
1: तो अभी यहाँ इस एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिविजुअल में आप 1 अंक से हार गई कोरियाई से, उसके बाद अब टीम इवेंट भी हुआ आज, तो दोनों मिला के आप इस परफॉर्मेंस से कितनी है, क्योंकि सर्जरी के बाद अब पहला कंपटीशन है, तो कैसा एक रहा, सेटिस्फाई?
0: सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि सर्जरी के बाद नो हमें डर लगता है वो, हाँ कि मैंने शोल्डर में सर्जरी किया था तो कभी कभी डर लगता है कंपटीशन में उस स्ट्रेस की वजह से फिर से कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए करके. लेकिन आई एम हैप्पी दैट कि वो फील नहीं था मेरे से. मैंने पूरा मैंने यूज़ किया मेरा शोल्डर को जैसे मैं नॉर्मली खेलती हूँ, तो वो हमारा पहला गोल था क्योंकि मैं बिना फियर की वजह खेलूँ और पूरा खुल के खेलूँ. एंड वो गोल हमने अचीव किया. यस, रिजल्ट वाइज मैंने 1 पॉइंट से हार गया, फिर भी मैंने हार ही गया, तो वो वर्क करना है. जब 14-14 होता है उस स्ट्रेस में कैसे खेलना है उसके लिए थोड़ा स्ट्रांगली मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा फ्यूचर में भी. क्योंकि
1: मेंस एपी टीम के मुकाबले में आज भारतीय टीम राउंड ऑफ 16 में चीनी ताइपे से पराजित हो गई. उसके बाद जो रैंकिंग के 3 मुकाबले हुए वहां वियतनाम से मुकाबले में हार मिली, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और ईरान और ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर 13वां स्थान हासिल किया. हमारे साथ हैं टीम के कोच मोहित जी, और क्या बताना चाहेंगे आकाशवाणी को आज की कंपटीशन के बारे में?
2: बड़ा ही अच्छा कमबैक किया था इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि मैच्योर्ड फेंसर आए उनके साथ और उनके साथ स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रहा. पहले जो 5 बाउट तक तो उसको बराबर ही था, फिर आपको पता है कि जैसे एक्सपीरियंस काउंट करता है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आगे आती है तो जो ज़्यादा मैच्योर्ड फेंसर है, ज़्यादा टेक्निकली टैक्टिकली स्ट्रांग है, वो विन कर जाते हैं. लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यंग पूरा बैच है, 19 साल, 20 साल, 22 साल और 23 साल टोटल उम्र है इन चारों की. तो सबसे अच्छी बात यह है कि यंग बच्चे जो हैं ये अच्छा खेल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. और यही टीम अगर आगे भी अच्छा खेलेगी तो डेफिनेटली हम, मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आने वाले 3 या 4 साल में हम पक्का फाइनलिस्ट होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर.
1: सर अभी विश्व चैंपियनशिप होनी है, एशियन गेम्स हैं, तो वहाँ इसके लिए आप समझते हैं कि ये अच्छा मंच मिल गया हमें, हम रैंकिंग राउंड में भी अच्छा करने में सफल हो रहे हैं?
2: डेफिनेटली, देखिए आपके सामने ही है 4-4 मैच लगाने, 1-1 घंटे से ऊपर का मैच होता है और आप देखिए कि लास्ट के दो मैच विन करने, ये पॉजिटिव अप्रोच है कि एंड्योरेंस बच्चों में है स्पेसिफिक। इसके अलावा जो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो हमें टेक्निक और टैक्टिक्स पे ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स और बीच में कॉमनवेल्थ भी है चैंपियनशिप, तो ये बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है। और कॉमनवेल्थ में तो

0: मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि हम काफी सारे मेडल लेके आने वाले हैं। थैंक यू।
1: कल फेंसिंग चैंपियनशिप का अंतिम दिन है जिसमें महिला एपी और पुरुषों की फाइल टीम स्पर्धाएं होंगी। भारतीय महिला एपी खिलाड़ी प्राची ने कहा,
2: मैं एपी टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंडिया की तरफ से, और मेरा कंपटीशन जो था इंडिविजुअल उसमें मैं 22nd रही ओवरऑल। ये बहुत एक बहुत अच्छा कंपटीशन था मेरे लिए। मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया इस कंपटीशन से। कुछ गलतियां रही क्योंकि मुझे लगता है कि मैं और अच्छा कर सकती थी और बेहतर कर सकती थी, पर अब मैं मुझे वो गलतियां जो हुई उनसे मैं सीखूंगी और आगे और अच्छी तरह बेहतर परफॉर्म करने की मैं कोशिश करूंगी। और जो कल हमारा टीम इवेंट है उसमें हमें भी बहुत उम्मीद है हमारी टीम से, क्योंकि हमारी टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मानी जा रही है इस कंपटीशन में, जो एपी टीम है विमेन की। और कल हम खेलेंगे और होपफुली वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और हम सभी, सिर्फ मैं नहीं, सभी बहुत तैयारियों में जुटे हुए हैं इस टाइम पे। और
3: आप हैं तनीक्षा?
2: हाँ, मैं तनीक्षा, मितवा, यश कीरत, हम चारों अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं कल के लिए। हम बहुत एक्साइटेड हैं कल खेलने के लिए।
1: वाली टीम स्पर्धाओं के बारे में भारतीय कोच ज्ञानेंद्र ने टीम की तैयारियों पर कहा,
4: भारतीय तलवारबाजी के लिए एक अहम दिन है जिसमें कल फॉयल मेंस का और एपी वुमेंस टीम का मुकाबला होना है। और जो हमारी फॉयल टीम है काफ़ी तैयार है, जो कि आने वाले एशियन गेम्स के लिए भी तैयारी कर रही है। तो इसके लिए जो यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे शायद मुकाबला कतर या फिर कजाकिस्तान से होने वाला है, अभी तक तो ड्रॉ आया नहीं है, जिससे अब तैयारी बहुत अच्छी है। और अच्छा है कि हम भारत को और आगे ले जाएंगे और फेंसिंग को और काफ़ी आगे तक बढ़ाएंगे।
1: कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी के लिए नवीन कुमार शर्मा।
5: फेंसिंग के बाद अब बात करते हैं शूटिंग की, और शूटिंग की रेंज पर आपको लिए चलेंगी हमारी सहयोगी अमीषा पटेल।
6: जी बिल्कुल, अब बात करते हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की, जो जर्मनी में चल रहा है, जहां भारत ने 24 मेंबर्स की एक टीम भेजी है। अगर मेडल्स की बात करें तो कल शिवा नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है, और मिक्स टीम्स की बात करें तो इस मैच में शिवा नरवाल और वंशिका चौधरी की जोड़ी ने फिर से सिल्वर मेडल जीता, जिसके साथ भारत के पास कुल 16 मेडल्स हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रोंज हैं। और भारत ने अब मेडल स्टैंडिंग्स में पहला स्थान भी हासिल कर लिया है।
5: बहुत ही शानदार, जो बढ़िया परफॉर्मेंस भारतीय शूटर्स ने दी है वो तो अपने आप में काबिले तारीफ है। और वही काबिले तारीफ ये भी है कि भारतीय वॉलीबॉल टीम भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ी है, और इस समय अपने पूल बी के मुकाबले में आज उनका जो मुकाबला होना है वो बहरीन के साथ होना है, और इससे पहले चाइनीज ताइपे को भारतीय टीम ने हरा दिया था। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर यही है कि भारतीय वॉलीबॉल टीम भी अपने मुकाबले जीत रही है। दोस्तों, ढेर सारी खेलों की खबरें, लेकिन अब स्टूडियो घड़ी में बता रही है कि हमें आपसे विदा लेनी होगी। मैं अजय तोमर, मेरी सहयोगी अमीषा पटेल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेते हैं।
6: नमस्कार।
5: नमस्कार।
7: खेल खिलाड़ी।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आरंभ में सुनिए अरिजीत सिंह के स्वर में ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि सिंह ने और संगीत से सवारा है जीत गांगुली ने। फिल्म का नाम है सिटी लाइट्स।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस

0: की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष

0: प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation.

0: Uzbekistan in a Group K fixture at Houston in US, with Cristiano Ronaldo's side aiming to bounce back after being held to a draw in their opening match. The match will begin at 10:30 p.m. Indian time. In Group L, England will take on Ghana in a highly anticipated clash in Boston at 1:30 a.m. India finished another successful day at the ISSF Junior World Championship, with the country's shooters adding three more medals, including two silver and one bronze, to their tally in Zoll, Germany. Shiva Narwal won the silver in the men's 10-meter air pistol junior event with an impressive performance, while Yu Pratap Singh Rathore claimed the bronze in the same event, ensuring a double podium finish for India. India also secured a silver in the men's 10-meter air pistol junior team event. With these three medals, India's overall tally has risen to 15, comprising 5 gold, 3 silver and 7 bronze. India and the US opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in US tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met US Trade Representative Jamie Sengria and US Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2% today, mirroring losses across global markets. We have a report.
1: Sensex plunged by 893 points to close at 76,201, while Nifty shed 279 points to settle at 23,824. In the foreign exchange market, the rupee depreciated by 6 paise to close at 94 rupees and 74 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.1% down at 1,46,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% lower at 2,28,370 rupees per kilogram a short while ago. With Intikab's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singh Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात के इनका से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है। और फीफा आलमी कप में हाउस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज़्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی سے لے کر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے لاحق مشترکہ چیلنجوں کے ازالے کی خاطر برکس کا انتہائی اہم رول ہے۔ وزیراعظم مودی نے آج شام نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سیکیورٹی کے سینئر عہدیداران سے ملاقات کی۔

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारियां सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने AI पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक AI डेटा केंद्रों को

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1:10 हुए हैं। गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन।

0: उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

अभी आपने अर्पण फिल्म से गीत सुना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था। आइए अब सुनते हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम में अगला गीत।

कभी बेबसी निमारा। अलग अलग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। और आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और बहुत कहें कि गीत संगीत की दुनिया में संगीत जो है, गीत जो है, एक साथ देता है, अकेलेपन को दूर करता है, एक उत्साह बनता है, एक प्रेरणा देता है, साथ ही साथ उस खालीपन को दूर करता है जो अकेले होने के साथ साथ पनपता है। संगीत एक साथी है, एक चिकित्सा है, एक सुकून है। और इसी सुकून को हम सुनाना चाहते हैं आपको गीत सुनहरे कार्यक्रम में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने लुटेरे फिल्म से गीत सुना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। फिल्म थी लुटेरे, गीत संगीत आनंद मिलन का था। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रजिया सुल्तान से, बेला सुलेखा की आवाज़ में।

और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत, इस गीत के साथ मुझे आपसे लेनी होगी विदा। अगली मुलाकात तक आप अपना, अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी में प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्त मोहन को याद रखिए। सुनते रहिए

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने AI पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक AI डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील भी की। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत हासिल कराई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही रोनाल्डो ने विश्व कप इतिहास में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। वो 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 2:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत, लगातार फिल्मी गाने। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून से संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट मिशन मोड पर कराया जाए। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी क्षेत्र के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है रात्रि के 3:10 और यह समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आइए सुनते हैं गजलों और गीतों के कार्यक्रम में ये दो गजलें भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: उम्मीद ऑप्टिमिज्म आशा भूपेंदा के हाथ से कभी नहीं छूटती, न लोकगीतों में जो वो गाते हैं, न नज्मों से जो वो लिखते हैं और कंपोज करते हैं।

यहां तक कि तन्हाई में भी वो अकेला महसूस नहीं करते। उनका साया उनके साथ रहता है, उम्मीद की जोत जलाए रखता है। और वो ऊंची आवाज से कहते हैं, ना कहो कोई, मैं अकेला हूं।

मैंने भूपिंदा के गीतों का अच्छा अनुवाद नहीं किया, मैं जानता हूं, या वो जानते होंगे जिन्होंने ओरिजिनल असमिया सुना है। मैंने कोशिश की थी इसलिए कि अनुवाद मुमकिन नहीं है। किसी भी इलाके की शायरी का तर्जुमा तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना किया है कि सुनने वालों को उकसाऊं कि वो इस शायर को, इस गायक को, इस संगीतकार को ढूंढें, तलाश करें और सुनें।

वाकई में श्रोताओं, गजल गायकी में भूपेन हजारिका साहब की अदायगी कुछ अलग ही थी। ऐसे ही एक और गजल गायक थे जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और वो थे भूपेंदर। जी हाँ, हम आपको अभी अब सुनवाने वाले हैं भूपेंदर साहब की ये दो प्यारी सी गजलें।

श्रोताओं, जिस प्रकार भूपेंद्र और भूपेन हजारिका साहब ने अपना एक अलग मुकाम बनाया था, ठीक वैसे ही चित्रा सिंह ने भी गजल गायकी में अपना एक अलग मुकाम बनाया था। और सबसे अहम बात यह थी कि वो मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह जी की पत्नी थी। आइए सुनते हैं उनकी मधुर आवाज में ये प्यारी सी गजल।

इसी के साथ श्रोताओं, गजलों और गीतों कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये दो गजलें पंकज उधास साहब की आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम अर्चना।

भक्ति संगीत के प्रातकालीन अर्चना कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं धर्मपुरम पी स्वामीनाथन और साथियों द्वारा प्रस्तुत तिरुज्ञान संबंधर की रचना।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पी के गोविंद राव के स्वर में पुरंदर दास का देवरनामा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि। तदनुसार 24 जून सन 2026। सुबह के 4:54 और 2 सेकंड हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। 5:10 का समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी सुन सकेंगे। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन सकते हैं। छह बजकर 10 मिनट पर समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का और 6:40 पर आप कार्यक्रम चिंतन सुन सकते हैं। 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस बालकांड का भाग 96। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप हिंदी समाचार सुन सकेंगे और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका आप सुनेंगे और 7:30 पर गीतों भरी कार्यक्रम का आप आनंद उठा सकते हैं। सुबह 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों समाचार प्रभात का और 8:15 पर आप अंग्रेजी समाचार मॉर्निंग न्यूज सुन सकेंगे। 8:30 पर समय होगा उर्दू समाचारों का। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा आप 8:45 पर सुन सकते हैं और 9:15 पर समय होगा साइंस मैगजीन का। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के पांच बजने को हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी 29 जून तक किसी तरह का मौसम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अगले 2 दिन तक बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चौखन मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी

सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।